मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:55 हो रहे हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं खरीफ सब्जियों की खेती विषय पर विनोद कुमार से वार्ता।
1: बिहार में सब्जी की खेती लगभग 5.11 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है, जिससे लगभग 53.20 लाख टन सब्जी उपजती है। वैसे बिहार के जनसंख्या के लिए लगभग 73 लाख टन सब्जी की आवश्यकता है, इसलिए सब्जियों की उन्नत किस्में लगाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। नेनुआ, पूसा चिकनी, यह प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली गई। इस प्रजाति की खेती खरीफ एवं जायद में की जाती है। इसके फल चिकने तथा हरे रंग के होते हैं, जो बुआई के 75 से 80 दिन में तैयार हो जाते हैं। फलों का औसत भार 150 से 200 ग्राम होता है। एक पौधे से लगभग 15 से 20 फल प्राप्त होते हैं। राजेंद्र ननुआ एक, यह किस्म सिवान जिले के स्थानीय किस्म से चयन विधि द्वारा निकाली गई है। इस किस्म की व्यवसायिक अनुशंसा सन 1992 में की गई। यह अत्यंत अगात किस्म है, जो गर्मा तथा खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की औसत उपज क्षमता 270 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म के फलों का स्वाद उत्तम होने के कारण ग्राहक अधिक पसंद करते हैं। यह सफेद चूर्ण तथा फल विगलन रोधी किस्म है। झिगनी, पूसा नजदार, यह प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। इसके फलों पर उभरी हुई धारियां बनी रहती हैं। सतपुतिया, इसके फल छोटे छोटे होते हैं और गुच्छों में लगते हैं। एक गुच्छा में करीब 4 से 7 फल लगते हैं। यहाँ पर इसकी खेती अधिक होती है। बैंगन, पूसा पर्पल लौंग, यह बहुत प्रचलित और उत्तम प्रजाति है। इस प्रजाति के फल गहरे बैंगनी रंग के तथा 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बुआई के लगभग 80 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र अन्नपूर्णा, इस प्रजाति का विकास तमिलनाडु के स्थानीय किस्म अन्नमलाई से चयन विधि द्वारा किया गया है। ऊपरी भूमि में खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त है। इस किस्म में फल देर से लगते हैं। फलों का रंग बैंगनी होता है। औसत उपज लगभग 275 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म लिटिल लीफ, उक्ता, फोमोप्सिस रोग रोधी है। राजेंद्र बैंगन दो, यह प्रजाति समस्तीपुर क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति से चयन विधि द्वारा निकाली गई है। यह हरे लंबे फल वाली एक अगात प्रजाति है। फलों की पहली तोड़ाई बीज बोने के 68 दिनों के बाद होती है। फल हरे रंग के, चमकीले, मुलायम तथा कम बीज वाले होते हैं। यह प्रजाति उकता रोग रोधी है। इस प्रजाति पर फल छेदक कीट का आक्रमण नहीं के बराबर होता है। इसकी उपज लगभग 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा पर्पल राउंड, यह बहुत प्रचलित उन्नत प्रजाति है। इसका पौधा बड़ा, फल गोल तथा गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। फल लगभग 500 ग्राम वजन का होता है। यह प्रजाति जुलाई अगस्त में लगाने के लिए अच्छी है। इसकी औसत उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। भिंडी, पूसा सावनी, उत्पादन की दृष्टि से यह एक उत्तम प्रजाति है। खरीफ में 60 से 65 दिन में फलने लगती है। इसके फल हरे रंग के, 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे तथा खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इस प्रजाति पर मोजेक बीमारी का अपेक्षाकृत कम प्रभाव होता है, इसलिए औसत उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। परकिंस लॉन्ग ग्रीन, प्रजाति के लंबे तथा गहरे हरे रंग के होते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, विषय था खरीफ सब्जियों की खेती। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार बुलेटिन सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही

0: लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। चिंतन मनन में चिंतन आज सुमित्रा नंदन पंत के लेखनी और जीवन पर। आलेख नूतन का है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं ने लोगों के मन में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, बोध और मानवीय संवेदनाओं को जागृत किया। जब हिंदी कविता में और मानवीय संवेदनाओं को जगाने की बात आई तो हिंदी कविता में कठोरता एवं उपदेशात्मकता अधिक थी। तब पंत ने अपने कोमल, मधुर और संगीतात्मक भाषा से पाठकों को नई अनुभूति प्रदान की। पर्वत, झरने, बादल, फूल और चांदनी का इनका चित्रण जनमानस के हृदय को स्पर्श करता प्रतीत होता है। सुमित्रा नंदन पंत की कोमल कामना ही थी कि वो चाहते थे मनुष्य की सोच मानवता, प्रेम और विश्व बंधुत्व के दिशा में हों। पंत चाहते थे मनुष्य जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एक उत्तम जीवन जिए। जातिवादी विचार मनुष्य को संकीर्ण बनाता है, जबकि खुली सोच और मुक्तता जीवन में शांति, सफलता और प्रफुल्लता का मार्ग प्रशस्त करता है। पंत जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इनका जन्म उत्तराखंड के प्राकृतिक वातावरण में हुआ था, अतः इनकी रचनाओं में प्रकृति का प्रभाव, चिंतन और गहन आध्यात्मिकता और व्यक्तित्व को काफी प्रखर और अनुकरणीय बना देने वाला था। भाषा की सरलता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति शिक्षित वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग के पाठक तक उनकी कविता के रसिया थे। शायद एक बड़ा कारण यह भी था कि उनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि उनकी कविताओं को सुनते ही लोगों के मन में पंत जी के नाम का उच्चारण होता था। जीवन की दृष्टि से जब मन पंत की रचनाओं का अवलोकन करता है तो पाता है कि पंत के काव्याकाश का, या यूं कहें उनके व्यक्तित्व का, कवित्व के मुक्ताकाश का जो स्वर है वो है मनुष्य और प्रकृति के गहरे संबंध, प्रेम, करुणा और मानवता के सौंदर्य के प्रति अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक पक्ष पर गहन विचार, मनुष्य को शांति और संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करना, कल्पना और यथार्थ का सुंदर समन्वय और जीवन को सुंदर, सरल और मानवीय दृष्टि से अभिप्रेरित करना। आधुनिक युग में मनुष्य भौतिकता, तनाव और प्रकृति से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में पंत जी की कविताएं प्रकृति प्रेम, शांति और संवेदनशीलता का संदेश देती है। आज समाज में बढ़ती स्वार्थपरता, हिंसा और मानसिक अशांति के बीच उनका संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण संकट के वर्तमान समय में पंत जी का प्रकृति चित्रण विशेष रूप से सार्थक प्रतीत होता है। मानवीय जीवन में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, हर जीवन में मानवता के प्रति समर्पण हो, हम शांति और इस आधुनिक माया के आबोहवा से दूर जीवन जी सकें, मूल जीवन जी सकें, हम प्रकृति

से जुड़ा हुआ जीवन जी सकें, हम प्रदूषण के प्रति सजग हों, स्वच्छता के प्रति सजग हों और प्रदूषण और स्वच्छता को, प्रदूषण को मिटाने और स्वच्छता को अपनाने में अपनी सहभागिता पर विचार करें, यही पंत जी की मूल अभिव्यक्ति थी। क्या सोचते हैं आप? अभी आप चिंतन मनन में सुन रहे थे चिंतन सुमित्रा नंदन पंत पर। चिंतन मनन संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:10 हो रहे हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अरुण, ये मधुमाई देश हमारा। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम वंदना में अभी हमने समूह स्वर में देश वंदना सुनी। अब आइए सुमिरन करते हैं उस परम पुरुष परमात्मा की, जिनके सुमिरन से सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन ये मानव जीवन की विडंबना ही है कि वो सब कुछ करता है जो यहीं रह जाने वाला है, और वह हरगिज नहीं करता है वह काम जो उसे लोक परलोक दोनों में शांति देने वाला होता है।

ये मानव की वृत्तियां हैं, संसार में जितनी भी अशुद्धियां हैं जो सांसारिक तौर पर हमारे जीवन को विकृत कर सकती हैं, आध्यात्मिक और पारलौकिक तौर पर हमें विनाश के गर्त में पहुंचा सकती हैं, उन अवगुणों को स्वयं में स्थापित करते रहते हैं। और जो गुण, जो सत्य बोलना, सेवा भाव, स्वच्छ रहना, प्रेम करना,

दया करना, क्षमा करना, जो ये ईश्वर प्रदत्त गुण हैं, ईश्वरत्व वाले गुण हैं, इन गुणों से हम स्वयं को बचाते रहते हैं, ये हमारे अवमूल्यन का, हमारे पतन का, हमारे विनाश का मूल कारण हो जाता है। प्रभु, जरा हम ये सोचें कि ये शरीर एक दिन छूटेगा जरूर, लेकिन जब यह छूट जाएगा तो हमारे साथ क्या रह जाएगा और संसार हमें किस रूप में याद करेगा। हमें ऐसा लगता है संसार में इतने लोग आए और गए, हमें उनके जीवन से स्वयं को परखना चाहिए, उन्होंने क्या क्या किया और किस प्रकार आज जीवित हैं हमारे बीच। शरीर ना होते हुए भी उनकी कृति हम किस प्रकार याद करते हैं, अच्छों को अच्छा, बुरों को बुरा, जो सामान्य रहे, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, अपना जीवन जीते रहे, वो गुमनाम से रहे। अच्छे गुणों के लिए ही तो राम सर्वथा पूजित हैं, और अवगुणों की खान होने के कारण ही महान विद्वान होकर भी रावण अपूज्य और राक्षस श्रेणी में गया। बस स्वयं को परखने का यही बहुत अच्छा अवसर और महान कसौटी है, इस पर स्वयं को खरा रखना चाहिए।

चादर अथवा अर्थात शरीर। हमें सोचना है, ये शरीर पुराना हो रहा है, हमें इसका अभिमान छोड़कर इसके सार्थक उपयोग का अब भी सोच कर लेना चाहिए। यही कल्याण और मुक्ति का कारण हो सकता है।

0: आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में, किस अभिमान में फिर रहे हैं, ये शरीर तो मिट्टी होनी है। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, हमें संतोष दे दो प्रभु, जिससे जीवन सार्थक हो जाए। इस वजन के साथ ही आज के इस वंदना कार्यक्रम का समापन हुआ। आज आपने अनूप जलोटा की आवाज़ में कुछ वजन सुने। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है बदलते मौसम में सावधानियां। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर गौर मोहन मजूमदार, भेंट करता है सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है और ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम कुछ सावधानियां बरतें, और इसी विषय पर आज हम बातें करेंगे डॉक्टर गौर मोहन मजूमदार से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जब भी कोई मौसम बदलता है उस समय हमें साधारणतया किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
2: सर, प्रथम तो हमें इस बात को जानना है कि हमारी जलवायु के साथ हमारे शरीर का क्या संबंध बनता है।
1: जी,
2: हम जान रहे हैं इस बात की भारत की जलवायु परिवर्तनशील है।
1: जी,
2: ऋतु परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन से मानव शरीर हमेशा से प्रभावित हो रहा है। इसका मुख्य कारण हमारे शरीर की बनावट है।
1: जी,
2: हमारे देश में मुख्यतः 5 मौसम, प्रत्येक मौसम की अपनी विशेषता होती है एवं प्रत्येक मौसम का हमारे शरीर पर प्रभाव अलग अलग ढंग से पड़ता है।
1: जी,
2: होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान को प्राकृतिक चिकित्सा विधान के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त है। अतः प्रकृति प्रदत्त बीमारियों में होम्योपैथिक चिकित्सा का महत्व बहुत ही ज्यादा है, और यह सर्वविदित है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का कोई भी कुप्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ता।
1: तो डॉक्टर साहब, अब हम इस ऋतु की बात करें कि अभी ठंड से हम ग्रीष्म ऋतु की ओर जा रहे हैं और अभी वसंत ऋतु है, तो इस ऋतु में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: बसंत के उल्लास के साथ हमें बसंत ऋतु के शरीर पर पड़ने वाली प्रभाव से भी सतर्क रहना है।
1: जी,
2: क्योंकि मौसम में बदलाव से बसंत के प्रभाव से हमारे शरीर में या आए दिन हम अभी देख रहे हैं कुकर खांसी, चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, न्यूरोलॉजिक पीड़ा अर्थात नर्व का दर्द, पेट की बीमारियां, सर में चक्कर एवं मिजल्स आदि बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आपने चर्चा की कि कुकुर खांसी, चर्म रोग, फोड़ा फुंसी इत्यादि अनेक रोग हो सकते हैं इस मौसम में।
2: हाँ।
1: तो कुकुर खांसी होने के क्या कारण है और कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं?
2: अभी हम देख रहे हैं कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, एक खांसी हमारी यहाँ भी चली हुई है जो कि इतना खांसी होता है कि मुंह ही बंद नहीं होता है।
1: जी,
2: चेहरा लाल हो जाता है, खांसते खांसते लोग कई कर देते हैं।
1: जी,
2: ऐसी स्थिति को ही कुकर खांसी कहा जाता है।
1: खांसी नहीं हो, इसके लिए सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए?
2: अभी भी हमें थोड़ा सुसुम पानी का सेवन करना है, गले को ढक के रखना है, पंखा का प्रयोग अभी हमें नहीं करना चाहिए।
1: जी,
2: अगर थोड़ी बहुत गर्मी लगती है तो उसे बर्दाश्त करना है, ना कि हम फैन चला के बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो इससे हमारी खांसी भी बढ़ती है। हाँ, अगर फैन वगैरह नहीं चलाते हैं तो खांसी नहीं होगी, ये बचाव तो हमें करनी है।
1: जी, डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि अनेक प्रकार के

0: चर्म रोग भी हो सकते हैं, तो उनके होने का क्या कारण है?
1: क्योंकि जब हम गर्म कपड़े को उतारते हैं तो कोल्ड टू हॉट में जाते हैं
0: जी
1: तो होता है क्या, तो उसका प्रभाव शरीर चर्म पर भी पड़ता है। हर चर्म रोग जैसे पित्ती हुआ या खुजलाहट स्किन पे होने लगती है, रैशेस
0: जी
1: आने लगता है, तो इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि नसों में दर्द भी हो सकता है, तो इसका क्या कारण है?
1: हाँ, तो ऐसे में देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजिक पेन भी जो है इस मौसम में बढ़ जाता है।
0: जी
1: कोई दांत में दर्द बतलाता है, कोई किसी नर्व में सर्वाइकल न्यूरोलॉजिक पेन भी बतला देता है। तो ऐसे रोगों के लिए भी जो है होम्योपैथिक में सटीक दवाइयों का प्रावधान है।
0: जी डॉक्टर साहब, पेट की बीमारियां भी हो सकती है इस मौसम में,
1: बिल्कुल हो रही
0: जैसा
1: है,
0: कि
1: पेट
0: आपने
1: खराब हो
0: कहा
1: रही
0: भी,
1: है।
0: तो इससे कैसे बचना चाहिए?
1: देखिए अभी क्या है, जनरली हम देख रहे हैं कि पेट में क्या खराबी, पेट खराब हो रहा है लोगों को, पतला दस्त आ रहा है, तो इसके लिए दो दवाई ब्राइनिया सिक्स
0: जी
1: और आयरिस वर्स
0: जी जी
1: सिक्स अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो पेट में हमारा ठीक हो जाता है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, अंत में हम ये आपसे जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि इस बदलते मौसम में हमें खास करके किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें।
1: हम तो देख रहे हैं कि दिन में गर्मी, रात को ठंड का एहसास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम
0: जी
1: अपने शरीर को गले से ऊपर के भाप को अगर ढककर रखते हैं
0: जी
1: और गर्म कपड़ा का एकाएक नहीं उतारते हैं, धीरे
0: जी
1: धीरे उसे उतारते हैं,
0: जी
1: अंदर में एक कूलन कुछ भी पहन कर रखते हैं, तो
0: जी
1: हमारा बचाव होता है। खान पान में अभी हम आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने को थोड़ा सा निषेध रखते हैं, तो
0: जी
1: हमारा इससे सावधानी, हम इससे बढ़ सकते हैं।
0: जी जी जी निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बदलते मौसम में ली जाने वाली सावधानियों पर इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। निवेदित है श्री रामचरित मानस गान, मुख्य गायन स्वर वाणी जयराम का है, संगीत सतीश भाटिया का।
3: एपिसोड नंबर 226, 226।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान, मुख्य गायन स्वर शोभना राव और मालिनी नाम्बियार का था। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज रसरंग में कलाकार होंगे स्वामी प्रणवानंद और काव्यांजलि में अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत होंगे कृष्ण मोहन सिन्हा। इसके अलावा रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं, मौसम की सूचनाएं, अखबारों की सुर्खियाँ और आज का इतिहास होगा और फिल्मी नगमा की सौगातें भी होंगी। यह सब कुछ होगा प्रातः 7 बजे से 7:55 के बीच कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत। 9:06 पर आप सुनेंगे नगमे नए पुराने कार्यक्रम। 9:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे सुनील कुमार मिश्र। दिन के 10 बजे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे शर्मिला गुप्ता। 10:45 पर आओ साथ चलें यह समन्वित कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिन के 11 बजे कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्मी नगमों का एक और कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे नारी लोक कार्यक्रम आप सुनते हैं। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। दोपहर 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कलाकार होंगे तीज नारायण चौधरी और साथी। 1:30 पर आज आप सुनेंगे हमारे ग्रामीण श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। दोपहर 2:30 पर चित्रपट से कार्यक्रम होगा। 3 बजे रविंद्र संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे लोपा मुद्रा मित्रा। 3:20 पर समूह स्वर में देशभक्ति गीत। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम होगा। 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। संध्या 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी के अंतर्गत 6:35 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे पारा मेडिकल है पारस। संध्या 7:10 पर श्रमिक जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम

आरंभ होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय हम अपने आकाशमंड के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा और 10:30 पर पुरानी फिल्मों से। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पनामी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे

0: स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिव अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7 बजे हैं। प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, आज तिथि है 20 मई 2026 और आज बहुत सारी बातें इस गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के इस कारवां में हम आपसे साझा करेंगे। उसमें इतिहास की भी बात होगी, समाचारों की भी बात होगी और फिल्मी नगमे भी होंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन अभी बात आज 20 मई के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में और वह है विश्व मधुमक्खी दिवस। क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? हमारे इस जीव जगत में जितने भी घटक हैं वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसका इस पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान ना हो। और मधुमक्खियों की तो बात ही निराली है, वो तो इतनी सहयोग करती है इस पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में कि हम मानव से तो उनका सीधा संबंध है, हमारे लिए बहुत लाभकारी है। अब कैसे लाभकारी है, फसलों के बारे में ही देख लें, चाहे वो फल की फसल हो, पुष्प की फसल हो, अन्न का फसल हो, कुछ भी हो, फसलों में मधुमक्खियों की बहुत महती भूमिका है। तितलियां तो परागण में सहायक होते ही हैं, बहुत सारे कीट भी सहायक होते हैं, लेकिन मधुमक्खियों की कुछ विशेषता इस प्रकार है कि मधुमक्खियां पॉलिनेशन में यानी परागण की प्रक्रिया में, फसलों के संकरण में बहुत सहायक होती है। जब मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं, तो परागकण उसके शरीर से चिपक जाता है और दूसरे फूलों तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि संकरण से दूसरे फूलों में पहुंचने से उसमें उपज बढ़ जाती है और यह उपज 25 से लेकर 85% तक की भारी वृद्धि कर सकती है, ऐसा शोध कहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मधुमक्खियों के पर भी होते हैं, मधुमक्खियों का शरीर भी कुछ इस तरह से बना होता है और उसके पैर को तो हम लोगों ने गौर से अगर देखा हो तो। और ख़ास बात यह है कि मधुमक्खियां खासकर फूलों में बैठती हैं क्योंकि उन्हें शहद लेना है और वह शहद इकट्ठा करके हमारे लिए, यानी मनुष्य अपनी इच्छा के लिए, अपनी उपयोग के लिए उसे ले आता है। लेकिन मधुमक्खियों की यह प्राकृतिक गुण हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करके छाता में, मतलब वो जो उसका मोम का बना हुआ छाता होता है, मोम भी स्वयं बनाती हैं मधुमक्खियां और उसमें शहद इकट्ठा करते हैं। और शहद का कितना बड़ा उपयोग है जो कहने की बात नहीं। मिस्र के एक मकबरे में 1200 वर्ष पुरानी शहद शीशे के यानी कांच के बोतल में मिली और वो यूं ही सुरक्षित था। कितना महान। और शहद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत कमाल की चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए और स्वाद के लिए तो है ही। आज जितनी भी दवाएं बन रही हैं आँखों से संबंधित, उसमें शहद का योगदान बड़े स्तर पर है। इसके अलावा हार्ट, जिसके हृदय की समस्या है या जिसके खून की समस्या है, जिसके पाचन की समस्या है, सब में शहद का प्रयोग हो रहा है दवाओं के रूप में। अब देखिए ना, शहद भी कितने प्रकार के होते हैं। कमल का शहद, कमल के पुष्प जो होते हैं उसका शहद आँखों के जो आँखों की दवाइयाँ जो बनती है उसमें बहुत सहायक है। करंज का शहद, वह शरीर में ब्लड बढ़ाता है, खून की वृद्धि करता है। और जामुन का शहद, जामुन के पुष्प का शहद, ये हृदय के लिए बहुत लाभकारी है। ये मनुष्य के मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। अजवाइन के पुष्प से जो रस और पराग इकट्ठा करके मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, वह पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसी तरह से अनेकानेक प्रकार के शहद की चर्चा है। हमारे आसपास लीची के पौधे हैं, तो लीची के पुष्प से जमा किया हुआ शहद सबसे मीठा होता है और शक्तिहीन लोगों को एक निश्चित मात्रा में नित्य खिलाने से शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही सरसों के पुष्प का शहद बहुत स्वादिष्ट होता है और वह बहुत गाढ़ा होता है और इसके सेवन से मनुष्य के शरीर में जो ठंड लगने की अत्यधिक समस्या होती है उससे भी निजात मिलती है। तो कितनी बड़ी बात है कि अलग अलग शहद के अलग अलग प्रकार, उसके अलग अलग गुण और सभी मानव के लिए वरदान के समान। और ये शहद जमा करती हैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद ही जमा नहीं करती हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, हमने देखा बहुत सारे प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियाँ जो बड़े बड़े आकार में होती थी बहुत सारे पेड़ों में लगाए करती थी, अब कम हो गई या न के बराबर हो गई, क्योंकि इतने सारे मोबाइल टावर सिग्नल्स बने जिससे कि तितलियाँ और मधुमक्खियों पर बहुत जोरदार असर पड़ा, विपरीत असर पड़ा, और इससे पारिस्थितिकी तंत्र के इस महान घटक के अस्तित्व पर खतरा आ गया। मानव अपने सुख सुविधाओं के इस अंधी दौर में प्रकृति का जो दोहन कर रहा है यह बहुत कष्टकारी होने वाला है। हमें चाहिए कि इन जीवों का, इन बायो जैव के जैव जगत के इन प्रमुख घटकों का हमें संरक्षण करना चाहिए और इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, विश्व मधुमक्खी दिवस। तो अभी हम बात कर रहे थे आज 20 मई के परिप्रेक्ष्य में विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार रील आवागमन संबंधित सूचनाएं हम आपसे साझा करेंगे।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। अब वक्त है रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं से रूबरू होने का। रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं में ये रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं में भागलपुर रेलवे पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई।

हैं। इसके अनुसार गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस प्रातः 7:50 पर अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाती है। हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस अपने नियत समय से 7:55 से भागलपुर रेलवे स्टेशन से आगे के स्टेशन के लिए रवाना होने की सूचना है। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर आती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने सही समय 8:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, इसका सही समय है भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का प्रातः 8:05, लेकिन आज ये रेलगाड़ी 2 घंटे से अधिक देरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से साहिबगंज के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 15648 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, ये साप्ताहिक रेलगाड़ी, इसका सही समय है भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने का 8:30, लेकिन आज ये रेलगाड़ी 2.5 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही है और ये रेलगाड़ी दिन के 11 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर आती है वनांचल एक्सप्रेस, प्रातः 9 बजे भागलपुर आएगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से जमालपुर जाती है गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर MEMU प्रातः 9:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 10:15 पर रवाना होगी और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार जाती है विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:55 पर रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है रसरंग का। आज इस रसरंग सेगमेंट में कलाकार हैं स्वामी प्रणवानंद। इनसे सबसे पहले आइए सुनते हैं महर्षि मेहिदास की ये भक्ति रचना।

0: mal.
1: निजी तन में हरि देख बाहर न खोजना। अभी हमने स्वामी प्रणवानंद से परमहंस मेहिदास की ये भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और अब वक्त है मौसम सूचनाओं से रूबरू होने का। अगले 5 दिनों तक कैसा रहने वाला है मौसम हमारा आसपास, इसके बारे में हमें सूचित करता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग सबौर का ये प्रपत्र। इसके अनुसार पूर्वानुमान में व्यक्त किया गया है कि आज यानी 20 मई से 24 मई के दौरान भागलपुर जिला और इसके आसपास के स्थानों पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः वेला में 70 से 75 प्रतिशत तक और फिर दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत तक रहने की संभावना है और सामान्यतः हवाओं की रफ्तार 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये मौसम सूचनाएं थी। अब आइए सुनते हैं प्रणवानंद से ये कबीरदास की भक्ति रचना।

अभी आप रस रंग में प्रणवानंद को सुन रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है काव्यांजलि का। आज काव्यांजलि में कविताओं के साथ उपस्थित हैं कृष्ण मोहन सिन्हा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424242 पर।
0: 8700001424242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: मेरी पहली रचना भारत देश हमारा है। पहला घर है देश हमारा, पहला घर है देश हमारा, सम्मान नहीं घटने देंगे। पहला घर है देश हमारा, सम्मान नहीं घटने देंगे। सर कट जाए बला से तिरंगा नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। कि देश के सारे लोग यहाँ, देश के सारे लोग यहाँ, मन में अपने ठानी हैं। संकट आए एक बने हम, संकट आए एक बने हम, अब अपनी यही कहानी है, अब अपनी यही कहानी है। आतंकी को मार गिराया, देश का मान बढ़ाया है। आतंकी को मार गिराया, देश का मान बढ़ाया है। अमर शहीदों की याद में, अमर शहीदों की याद में अस्त्र अर्घ चढ़ाया है। वीर सपूतों के समाधि पर, वीर सपूतों के समाधि पर जगमग दीप जलाएंगे। देख देख कर भारतवासी उनको भुला न पाएंगे, उनको भुला न पाएंगे। कि वीर सपूतों डटे रहो, वीर सपूतों डटे रहो तुम सीमा पर, वीर सपूतों डटे रहो तुम सीमा पर। सब नर नारी साथ तुम्हारे हैं, सब नर नारी साथ तुम्हारे हैं। हम राह हम मंजिल हम भी देश भक्ति में न्यारे हैं। ये वतन यह देश हमारा, ये वतन यह देश हमारा, अमन चैन ही प्यारे हैं। पर चढ़ आए जो माथे पर, पर चढ़ आए जो माथे पर हमने उसको मारे हैं, हमने उसको मारे हैं। अंतिम पंक्ति कि जान शान वो आन हमारा, जान शान वो आन हमारा सब देशों से न्यारा है। जान शान वो आन हमारा सब देशों में न्यारा है। जो प्रचंड और विनम्र भी, जो प्रचंड और विनम्र भी वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। मेरी दूसरी रचना इस बसंत ऋतु के आगमन में और मधुमाश के बारे में है। कि माश मधुमाश आया पर मन नहीं आया है, मास मधुमाश आया पर

0: उत्तर सवाल उठे, ऋतु बदल गई, अनुराग चुभन में बदली, बासंती हवा उड़ गई। सवाल के उत्तर सवाल उठे, ऋतु बदल गई, गम ऐसी गहराई की खुली आंखें सो गई। गम ऐसी गहराई की खुली आंखें सो गई, दिवा स्वप्न गहराया तो बैल का जुआ नजर आया। तो बैल का जुआ नजर आया, मांस मधुमास आया पर मन नहीं आया है, घनी आम्र मंजरियां आई पर मन मुरझाया है।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि में कविताएं कृष्ण मोहन सिन्हा से। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। समय हुआ है 7:30। अब ये शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत का। आज इस सेगमेंट की शुरुआत कुसूर फिल्म के इस नगमे के साथ, जिसे लिखा समीर ने, संगीत बद्ध किया नदीम श्रवण ने, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

जिंदगी बन गए हो तुम। अभी सुन रहे थे आप कसूर फिल्म कनकमा। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें थी। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है आज के समाचार पत्रों को टटोलने का। क्या कहते हैं समाचार पत्र, अगर हम इसकी तरफ नज़र डालें तो सबसे पहली और बड़ी सुर्खी है दैनिक भास्कर की, पेट्रोल डीजल और अब महंगा। 90 पैसे प्रति लीटर महंगी हुई पेट्रोल डीजल, 5 दिन में दाम 3 रुपये 90 पैसे बढ़ गए। देश में फल और सब्जियां 10 से 15% तक महंगी होने की संभावना। और इसके बारे में विस्तार से लिखते हुए अखबार कहता है, तेल कंपनियों पर दबाव कम, जनता पर बढ़ रहा बोझ। इसके अलावा एक दूसरी खबर है, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज, 9152 पदों पर होगी भर्ती। जून तक पूरी होगी 6656 शिक्षकों की नियुक्ति। 2026-27 से शुरू होगी पढ़ाई। गाँव में रुकेगा शिक्षा का पलायन, लेकिन जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती। इसे विस्तार से लिखते हुए अखबार कहता है, बिहार में अब ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। सरकार एक प्रखंड एक डिग्री कॉलेज की योजना पर काम कर रही है। राज्य के 38 जिलों में कुल 534 प्रखंड हैं, जिनमें से लगभग 300 प्रखंडों में अभी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए पहले चरण में 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन कॉलेजों में शैक्षणिक स्तर 2026-27 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अखबारों की दूसरी सुर्खी की तरफ अगर हम नज़र डालें तो अखबार लिखता है, बिहार के सीएम ने कहा 15 अगस्त तक रेफर सिस्टम बंद होगी, टाउनशिप के ज़रूरतमंद रैयतों को 4 गुना मुआवजा जल्द मिलेगा। खबर छपी है, विक्रमशिला सेतु के टूटे अंश पर गार्डर बिछाने का काम हुआ पूरा, अब प्लेट लगेगा। विक्रमशिला सेतु के टूटे अंश पर मंगलवार को गार्डर बिछाने का काम पूरा हो गया है, अब जल्द ही प्लेट लगाने का काम शुरू होगा। बेली ब्रिज पर वाहन चढ़ने के लिए रैंप भी बनाया जाएगा। BRO के अधिकारी ने बताया कि 3 से 4 दिन में ब्रिज बनाने का काम पूरा हो जाएगा और हल्की गाड़ियाँ आने जाने में अब सहायता होगी। इसके अलावा दूसरी खबर की तरफ हम नज़र डालें तो स्थायी समिति के चुनाव की तिथि तय, निगम में राजनीति शुरू, 26 से 31 मई के बीच होगा मतदान। नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्थायी समिति सदस्यों के निर्वाचन को लेकर तारीख तय कर दी है। इसके अलावा 2 साल काम कर चुके अंचल अमीर नियमित होंगे, अब अमीन सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कहलाएंगे। इसके अलावा नीट गड़बड़ी से जुड़ी हुई खबर छपी है, महाराष्ट्र की कोचिंग संचालकों की लीक नेटवर्क से पुरानी साठगांठ, लातूर की कोचिंग तक पिछले साल भी पहुंचा था नीट का पेपर। 19 छात्रों के का देश के विभिन्न एम्स में हुआ था चयन। इसके अलावा तिलकामांझी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर छपी है, तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में स्नातक सेमेस्टर 5 की संशोधित परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। 2023-27 सत्र के लिए परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार 2, 3 और 4 जून को परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में स्नातक में नामांकन का आवेदन भी बढ़ा, 19 की जगह अब 25 तक होंगे आवेदन, यानी 25 मई तक स्नातक में नामांकन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा शुरू हुई, तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में पीजी के सत्र 2024-26 के सेमेस्टर की परीक्षा, चौथे सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। तो ये थी कुछ अखबारों की सुर्खियाँ, और अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते खेल की खबरों पर नज़र हम डालें तो अब
धीरे धीरे सिमटते जा रहे आईपीएल के इस संस्करण की कहानी अखबारों में विशेष रूप से छपी है, जिसमें आईपीएल के इस वर्तमान संस्करण के 64वें मैच में राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से हराया। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी रही, उन्होंने 93 रन की पारी खेली और प्ले ऑफ से एक जीत दूर है राजस्थान रॉयल्स। जयपुर में राजस्थान की सीजन में ये पहली जीत है। 221 रन चेज कर राजस्थान विजेता बनी। तो ये अखबारों की सुर्खियाँ थी। अब आइए सुनते हैं एक और नगमा।

अभी आप सुन रहे थे कोई मिल गया है फिल्म में शान, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। गीत लिखा था नासिर फराज ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आपका फिर से स्वागत है। अब बारी है आज के इतिहास को टटोलने का। आज 20 मई है। आज का इतिहास क्या कहता है, अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो 20 मई का इतिहास भारत और दुनिया में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, खोजों और महान व्यक्तियों के जन्म और निधन के रूप में विशेष है। आज ही के दिन यानी 20 मई को ही 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट, जो अब कोचिकोड कहलाता है, वहाँ पहुँचे थे, जिससे यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। इसके अलावा 1310 में आज की तिथि को 20 मई को औपचारिक रूप से इतिहास में पहली बार दोनों पैरों के लिए अलग अलग डिजाइन के जूते बनाए गए थे। और आज की तिथि को भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा की का जन्म हुआ था 1977 में। 20 मई को उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आज 6वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष गोदी मुरहारी का भी जन्म हुआ था 1926 में। 20 मई को भारतीय आध्यात्मिक गुरु नारायण महाराज का जन्म हुआ था 1885 में 26 मई को। और अगर हम निधन की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस का निधन हो गया था आज की तिथि को 1506 में। इसके अलावा महान स्वतंत्रता सेनानी और लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी, क्रांतिकारी तिकड़ी के सदस्य विपिन चंद्र पाल का निधन हो गया था 1932 में 20 मई को। और मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध और वीर सूबेदार मल्हार राव होलकर का निधन हुआ था 20 मई 1766 को। इसके अलावा 20 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और पूर्वी तिमोर स्वतंत्रता दिवस है आज। तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर देश है और आज के दिन वो अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाता है प्रत्येक वर्ष 20 मई को। अभी आप आज के इतिहास में आज की तिथि यानी 20 मई के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग विक्रमशिला चलते चलते आइए सुन लेते हैं ये नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म मैं हूं ना से। आवाज़ें के और वसुंधरा दास की।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
3: सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप कुछ ही देर में क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे। इसके पश्चात आप 8:48 पर हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करे और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के

0: साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The prime ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo, Norway.
1: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies or government-aided education institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee JPC on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Ganjanagar, JPC chairperson P.P. Chaudhary said India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of 7 state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
2: सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि
3: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द कमेटी आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्टर अलोंग विद हिम एनके सिंह हु इज एन इकोनॉमिस्ट एंड गुलाम नबी आजाद हु इज अ प्रोमिनेंट लीडर विद वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वर पार्ट ऑफ इट दैट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विच रिकमेंडेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड विधानसभा शुड बी हेल्ड इन द कंट्री
2: में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने चाहिए।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग द न्यूज फॉर क्विक न्यूज अपडेट्स अराउंड द क्लॉक फॉलो अस ऑन एक्स हैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स एंड फॉर डिटेल्स ऑफ स्टोरीज एंड मोर लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.newsonair.gov.in एंड डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। Uttar Pradesh is reeling under severe heat wave with record-breaking temperatures every passing day. We have a report.
4: Banda district in Bundelkhand region of the state continues to be the hottest place in the country on the third consecutive day. Maximum temperature here reached 48.2 degrees. There was no respite from the scorching sun to other places of the state also, and the maximum day temperature is oscillating between 44 to 47 degrees at many places. Even nights have become unusually warmer and the minimum temperature is close to 30 degrees in many districts. Animals and birds are worst hit by this mercury rise. Normal life is paralyzed and incidents of heat stroke have increased. The meteorological department has issued a red alert regarding severe heat wave in the state for next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
1: Madhya Pradesh is scorching under severe heat wave. Orange and yellow alert has been issued for several districts as mercury hit 47 degrees Celsius for the first time in the state. We have more in this report.
5: Madhya Pradesh is reeling under intense heat. The blazing sun has made daily life very difficult. The Met Department has issued an orange alert for severe heat wave in several districts including Datia, Bhind, Rewa, Satna, Panna, Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari. A yellow alert has been issued for Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur and dozens of other districts. The heat wave is expected to continue for the next 3 to 4 days. On Tuesday, Nogaon recorded 47 degrees Celsius Celsius and Khajuraho touched 46.4 degrees Celsius. This is the first time this season that the mercury has reached 47 degrees Celsius. In 22 cities across the state, the maximum temperature crossed 44 degrees Celsius. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, yesterday Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole of government and whole of society approach.
6: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
1: Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches on Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on the 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
7: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. U.S. clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question OpenAI's win Musk's. Ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हममंसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजों में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
9: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मेटरेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुंसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
8: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
8: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
8: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तिजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे। जिसमें तजारती और इक्तसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारत का माहिदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाजह और मुश्तरका मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मेयार नहीं।
10: आज हम सबने मिलकर ग्लोब

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में किसी की जमीन टाउनशिप के लिए अधिग्रहित होने की स्थिति में संबंधित परिवार को विवाह या आपदा की स्थिति में जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा। सोनपुर प्रखंड की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन की जांच के बाद संबंधित व्यक्ति को जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा।
1: इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथियों, इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप में हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम।
0: इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में सरस्वती विद्या निकेतन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन के पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने ये निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक ढंग से अनुपालन करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीमा पर निगरानी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। साथ ही सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी सख्ती बरतें। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बीती फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 264 नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह चुनाव 15 से 25 अप्रैल तक संपन्न कराए जाने के बाद अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिए गए थे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार से बीजों पर अनुदान बढ़ाने की मांग की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री सिन्हा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दलहन और तिलहन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी अनुरोध किया। कृषि विभाग ने कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत 12 नए कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देने का फैसला किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा आधारित तकनीक और उच्च क्षमता वाली मशीनों, सौर धान थ्रेसर, छोटा धान कंबाइन हार्वेस्टर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों को शामिल किया गया है। वहीं कई पारंपरिक और छोटे उपकरणों को योजना की सूची से हटा दिया गया है। प्रदेश में आज शाम 7 बजे से 22 मई सुबह 8 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर कंपनियों की ओर से नई बिलिंग प्रणाली तैयार करने के मकसद से ये सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस अवधि में बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज और नया बिजली कनेक्शन समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और किशनगंज जिले के प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि किशनगंज में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। किशनगंज में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि जिले में 22 पावर सब स्टेशन PSS काम कर रहे हैं, वहीं 10 अन्य PSS को विकसित करने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी PSS के कार्यशील होने के बाद जिले में विद्युत आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर से ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आज देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभवाणी,
3: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार और पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है।
5: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 41.4, छपरा का 40.6 और पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडग्रेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के गंगा तट पर स्थित सभी मठ और मंदिरों में प्रतिदिन गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने इस संबंध में सभी मठ मंदिरों के महंत, न्यासधारियों, न्यास समिति के सदस्यों और प्रबंधकों को पत्र भेजा है। प्रोफेसर नंदन ने बताया कि परिषद से संबद्ध मठ मंदिरों में गंगा आरती की शुरुआत 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर से होगी। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र से वाहन जांच के दौरान पुलिस और एसएसबी की टीम ने 191 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में मधुबनी SC/ST थाना के प्रभारी रविंद्र राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7,480 बोतल कोडीन युक्त सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में प्रदेश के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। इधर शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई

इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 93 रनों की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग ने कहा है कि विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से 100 विद्यार्थी इस इंटर्नशिप में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और मानवाधिकार मुद्दों के प्रति निष्पक्ष और अधिक संवेदनशील बनाने में मदद करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सहयोग शिविर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पंचायतों के सहयोग शिविर में सुनी गई समस्याएं। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हिदायत को अपनी प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, 15 अगस्त के बाद बिना वजह रेफर नहीं, केवल गंभीर मरीजों को ही बड़े अस्पतालों में भेजें। दैनिक जागरण लिखता है, क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, व्हाट्सएप पर भी ईपीएफ बैलेंस और लेन देन की मिलेगी जानकारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, 9,152 पदों पर भर्ती। आज अखबार लिखता है, 12 सितंबर को भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस नगमे के साथ।

0: अभी आपने सुना क्या यही प्यार है इस फिल्म का, ये नगमा अलका याग्निक, कुमार सानू, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ें थी। गीत लिखा था जलीस रशीद ने, संगीतबद्ध किया था साजिद वासिद ने।
1: ये आकाशवाणी, नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में छुपा रुस्तम फिल्म का नगमा सुना। गीत लिखा था आनंद बख्श ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं यह नगमा।

0: चलते चलते फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अभिजीत को गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। इसके साथ ही नगमे नए पुराने कार्यक्रम का समापन होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।

0: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं सुनील कुमार मिश्र।

अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में कबीरदास की यह भक्ति रचना। कलाकार हैं सुनील कुमार मिश्रा।

0: अभी आप कबीरदास की भक्ति रचना सुन रहे थे। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुनील कुमार मिश्र को सुना। इसके साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनीता फिल्म के इस नगमे के साथ।

अभी आपने मुकेश की आवाज में अनीता फिल्म का नगमा सुना। गीत लिखा था रजा मेहदी अली खान ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से।

पुरानी फिल्मासी कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म कुदरत से। आवाज़ किशोर कुमार के गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुर ने, संगीतबद्ध किया है आर डी वर्मन ने।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

हम ये सुनते हैं आमने सामने फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीत आनंद बख्श ने लिखा है, संगीत बद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना आखिर देखी फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ें थी। गीत राम मूर्ति चतुर्वेदी ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था जी कौशिक ने। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का आखिरी नगमा है फिल्म मिलन से।

0: मिलन फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का सफर हुआ पूरा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं शर्मिला गुप्ता। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं ये कांवर गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम में शर्मिला गुप्ता को। लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10:45 होने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं हम हमारे पटना केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आओ सांस चलें। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की बौद्धिक विरासत। स्वर सहयोग संजय किशोर का है, आलेख एवं प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सभा की। तो आइए सुने कार्यक्रम आओ सांस चलें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना, समझना और जीना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रदेश बिहार की।

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना,

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर भूमि भी रही है। पटना के पास तारीगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

0: और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य की। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला, कथाशिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी, राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं UPSC से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश और बौद्धिक खुशबू है। यह वो भूमि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निखरना जानती है। आज के आओ साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 11 बजने ही वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है नई फिल्मों से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म फतेह से, आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा और आशीष कौर की। गीत शब्बीर अहमद और अजय पाल शर्मा के हैं, संगीतकार हैं शब्बीर अहमद।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, लाइफ इन मेट्रो इन डायनो। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
1: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं परम सुंदरी फिल्म से। आवाज़ें हैं अमिताभ भट्टाचार्य, विशाल मिश्रा और सचिन जिगर के। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

0: Akashvani at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कौसर मुनीर की गीत रचना प्रस्तुत है सचेत परंपरा के संगीत निर्देशन में रेड टू फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाते हैं सचेत टंडन एवं परंपरा टंडन के युगल स्वर में।

श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में कार्यक्रम का आखिरी गीत। गीत रचना मनोज मुंतशिर की है, संगीतकार हैं रॉकी शिव।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम है बहुत ही विशेष आप सबों के लिए, क्योंकि आज हम बातें करेंगे किसी और की नहीं बल्कि अपने आप की। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, क्योंकि किसी और के बारे में ये बताना कि वो ऐसा है, वो उसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, बहुत ही आसान होता है, पर बहुत ही मुश्किल होता है अपने अंदर झांकना कि आप किस सोच के हैं, आपके विचार कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं, और आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और आप आपके ख्वाब क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, और क्या आप एक परफेक्ट इंसान हैं। तो ऐसे परफेक्ट तो दोस्तों कोई नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं, पर उसके बावजूद अच्छे लोग वही कहलाते हैं जिनमें अच्छे गुणों की संख्या ज़्यादा हो। तो दोस्तों, कोई हम ईश्वर तो है नहीं कि हम परफेक्ट होंगे, पर कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, और कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, ज़िंदगी को हम अपने एक नए सिरे से हमें देखने की ज़रूरत होती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है, और हर परेशानी में हम आगे किस तरह से निकल के आएंगे, अपनी परेशानियों से किस तरह से जूझ कर उसे हरा कर अपने आप को निखारेंगे, ये हम पर निर्भर करता है, और इसे ही कहते हैं दोस्तों जिंदा दिली से जीने का अंदाज़। दोस्तों, ज़िंदगी कभी सीधी राह नहीं चलती, क्योंकि राहें सीधी हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। तभी तो आप देखिए कि जो भी प्राकृतिक जगह हैं, जहाँ की प्राकृतिक की गोद में आप ये महसूस करेंगे कि आप प्रकृति की गोद में हैं, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल तो होता है। तो ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है कि हमारी ज़िंदगी सही सीधी राह तो चल ही नहीं सकती है, और अगर राहें सीधी हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और गम आते और जाते हैं, कभी खुशियों की धूप खिलती है तो कभी संघर्ष से हम विचलित होकर छांव की आशा में ज़िंदगी को एक उम्मीद के साथ देखते हैं कि कब अच्छे वक्त आएंगे और हम खुशियों के जो हमारे जीवन में खुशियां होगी वो आएंगी। कभी सपने पूरे होते हैं तो कभी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़रूरी बात है वो यह है कि हम खुद को कितना समझते हैं और कितना अपनाते हैं। अक्सर हम दूसरों के लिए जीते जीते अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरों की पसंद याद रह जाती है हमें, लेकिन अपनी पसंद हम भूल जाते हैं। दूसरों की परेशानियां समझते समझते अपने मन की आवाज़ को सुनना हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम और ख़ास करके ये बातें महिलाओं पे ज़्यादा सटीक बैठ रही है कि हम अपनी परेशानी को भूलकर घर परिवार और में उलझते उलझते उलझते चले जाते हैं, और अपने बारे में हमें सोचने की, अपने बारे में समझने की हमें सुध ही नहीं रहती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा वक्त निकालिए आप अपने लिए, अपनी जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके बारे में सोचिए, आपके जो सपने हैं उसे पूरे करने की कोशिश कीजिए, और अपने दिल की आवाज़ को सुनिए ज़रूर, उसे नज़रअंदाज ना कीजिए।

हाँ तो दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं अपने आप के बारे में सोचने की। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने आप के बारे में सोचना तो ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को नज़रअंदाज कर जाएं। ऐसा हमें करना बिल्कुल भी नहीं है। हम दूसरे की परेशानियों को समझते समझते अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। यही क्रम अगर लगातार चलते रहता है तो कुछ दिनों में होता ये है कि आपकी भावनाएं, आपके सपने, आपकी उम्मीदें सब धीरे धीरे धूमिल सी होती चली जाती है। तो हमें बस अपने आप को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा महत्व देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बस अपने ही बारे में सोचते जाएं और हम दूसरों को कुछ दूसरों के बारे में जानने की कोशिश ना करें, उनको समझने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अपने से प्यार करने का मतलब अपने आप पर घमंड करना बिल्कुल नहीं होता, या फिर स्वार्थ सिद्धि जिसे कहते हैं हम, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने आप से प्यार करने का अर्थ होता है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। कभी-कभी हम ये देखते हैं दोस्तों कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो हीन भावना के शिकार होते चले जाते हैं, और ये चीज़ें आज के दौर में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जहाँ हम अपने आप को जाने बगैर कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं, ये हम आँख ही नहीं पाते हैं कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं और उसे सामने वाले से बखूबी ढंग से कर सकते हैं, उसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप सचमुच वो कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति ना कर सके। अगर वो ठान लेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो फिर हम ऐसे अपने बारे में क्यों सोचे कि हमसे ये काम नहीं होगा। और आजकल डिप्रेशन की जो समस्या है मित्रों, वो आप देख ही रहे हैं कि बढ़ते चला जा रहा है। किस तरह से लोग एंजाइटी और कई तरह की बीमारियों के चपेट में आते जा रहे हैं और अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं, अपने आप को समझना भूल गए हैं। तो आप भी करें खुद से प्यार, अपनी खूबियों को पहचान कर, अपनी कमियों को स्वीकार कर, और हर परिस्थिति में खुद का साथ देने का जो संकल्प है उसे आप करें। संकल्पित हों कि आप किसी भी परिस्थिति में डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और ना ही आप हिम्मत हार कर कोई गलत कदम उठाएंगे। जब दोस्तों आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती है। हम अपने फैसले पर भरोसा कर सकते हैं। ये यही हमें सिखाता है कि ये जो खुद से प्यार करना है तो होता है दोस्तों, वो हमें सिखाता है कि हम अपने आप पर किस तरह से भरोसा कर सकते हैं। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से पहले आपको अपनी नज़रों में अच्छा बनना होगा। तभी तो जब आप अपने आप को अच्छा समझेंगे, अपने खूबियों को जानेंगे, अपने हुनर को पहचानेंगे, तभी तो आपके सपनों को मिलेगा एक नया आसमान।

हाँ तो दोस्तों, आप भी जीवन के संगीत को सुनिए और अपने जीवन को बनाइए संगीत का सुहाना सफ़र, क्योंकि गीत संगीत ही हमारे जीवन को बनाता है खुशनुमा। दोस्तों, हम अपने जीवन को जिंदा दिली से जीना सीखें, और जिंदा दिली से जीने का मतलब सिर्फ हंसना या मुस्कुराना नहीं होता है। जिंदा दिली का अर्थ होता है दोस्तों, मुश्किलों में भी उम्मीद बनाए रखना। जब हालात कठिन हो और इंसान उस परिस्थिति में भी अपने आप को सजाने की कोशिश करे, संवारने की कोशिश करे, यही इस शब्द का अर्थ होता है। जब हार मिलने के बाद भी दोबारा कोशिश करने की उम्मीद हो हमारे अंदर, जब हम अकेले पन का शिकार हों, तो भी हम अपने सपने को देखना ना छोड़ें, उसे महसूस करना ना छोड़ें, यही जिंदा दिली का अर्थ होता है। मित्रों, ज़िंदगी हर दिन नया मौका देती है हमें। कल की हार आज की पहचान नहीं होती। हर सुबह अपने साथ एक नया सूरज, एक नई शुरुआत लेकर आती है। इसलिए बीते बातों को छोड़कर, उसके बोझ को अपने सर पर ना रखकर, गलतियों से सीख लेकर अपने पहचान को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और आपने जो अपनी पहचान बनाई है उसे बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। आप आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त है दोस्तों, लेकिन इस व्यस्तता में हम खुद के लिए कितना समय निकाल पाते हैं, अपने आप को हम कितना याद रखते हैं, अपने सपनों को कितना याद रखते हैं, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा समय अपने लिए हमें निकाल कर अपने मन की सुननी चाहिए, अपनी पसंद के गीत सुनने चाहिए, अपनी पुरानी यादों को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कुछ पल सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हमें बिताने चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद को समय देता है तब वह खुद को बेहतर समझ पाता है। खुद को खोकर किसी को पाया नहीं जाता, अपने दिल को दुखाकर मुस्कुराया नहीं जाता। तो दोस्तों, खुद की कद्र करना सीख

होती है, उसके सपने अलग होते हैं, उसकी कहानी अलग होती है। जिस तरह से आप कोई कहानी की किताब ले तो हर कहानी अलग-अलग होती है, उसी तरह इंसान भी अलग-अलग होते हैं, उनका सफ़र अलग होता है, उनकी मंजिलें अलग होती है। तो फिर आप अपनी खुशियों को, अपनी मुस्कुराहटों को दूसरे से तुलना करके क्यों गंवाएं? दोस्तों, आप अपनी मंजिल को ढूंढें, उस पे चलने की, उसके मंजिल पर किस तरह से पहुँचेंगे, उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए ना। क्या ज़रूरत है हमें हम दूसरों से तुलना करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें। जिस तरह दोस्तों फूलों के बगीचे में हर फूल अलग होता है और हर फूल की खुशबू अलग होती है, उसकी पहचान अलग होती है, ठीक उसी तरह हम भी हैं। हम अपनी ज़िंदगी को समझें और अपनी ज़िंदगी को सवारे, अपनी छोटी छोटी खुशियों को दूसरों के बारे में सोचकर व्यर्थ ना करें। और दोस्तों, आप जैसे हैं आप उसे अपने उसी रूप में अपने आप को स्वीकारने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मानना है दोस्तों कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे।

हाँ तो दोस्तों, हम दिल के सहजादे हैं, मर्जी की मलका, और यही सोच अपने बारे में विकसित करिए आप, और अपने अपने वादे को पूरी करने की कोशिश कीजिए। खुद को आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकारिए, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, पर दूसरों से तुलना आप बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी है तो सपनों को सजाइए, अपने दर्द को भूलकर मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, और दुनिया की भीड़ में खोइए नहीं, अपने आप को समझकर अपने आप से प्यार कीजिए, और कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नारीलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: नारीलोक सुन रहे सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज का नारीलोक सजा है बेहद ही खास अंदाज में आपके लिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा संदेश जो रोज़ का होता है, वो तो आपके लिए है ही, साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे एक कहानी जो कि है गीतों भरी, जिसे आप कहते हैं गीतों भरी कहानी। तो दोस्तों, है ना बेहद खास आज का ये कार्यक्रम आपके लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप बिल्कुल भी अपने रेडियो सेट को बंद मत करिएगा, उससे इधर उधर तो आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि हम हाजिर होते हैं बस एक अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: तो बहनों, आप सुन रहे हैं नारी लोक कार्यक्रम और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीतों भरी कहानी।
1: प्यार के कच्चे धागे से बंधा शादी का पवित्र रिश्ता, जिसमें बंद दो दिल जन्मों के लिए सुख दुख के साथी बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता बनने वाला था साक्षी और नीरज का भी। दुल्हन बनी साक्षी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। शादी का लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां, माथे पे मांगटीका और मासूम सा चेहरा, मानो मानो आसमान से कोई अप्सरा आ गई हो। लेकिन मन में घबराहट, मायका छूटने का दुख, वहीं दूसरी ओर अपने जीवन साथी से मिलने की खुशी और मन में हजारों सवाल, ये कश्मकश साक्षी के मन में चल ही रही थी कि अचानक से आवाज आती है, जल्दी करो जल्दी करो भाई, दुल्हन को फेरे के लिए लेकर आओ। साक्षी की सहेलियां उसे फेरों के लिए लेकर आती हैं और शादी की विधियां शुरू हो गई।

0: साक्षी ने नीरज का हाथ थाम नई जिंदगी में कदम रखा। दिल में हजारों अरमान, नए सपने। पापा की परी साक्षी बड़ी ही प्यारी, सुलझी हुई और समझदार थी। उसने कुछ ही दिनों में अपने गुणों और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। वहीं नीरज साक्षी से प्यार तो बहुत करता, लेकिन अपने लापरवाह स्वभाव के कारण अक्सर साक्षी का दिल भी दुखा देता। लेकिन फिर भी साक्षी का नीरज के प्रति प्यार उसकी हर गलती को माफ भी कर देता।
1: कहे तो

लेकिन वक्त गुजरने के साथ नीरज का व्यवहार साक्षी को दुख पहुंचाने लगा। कोई भी बात कह देना, गुस्सा आए तो हाथ तक उठा देना और फिर बस सॉरी कह देना। लेकिन उस गलती का एहसास तक ना था नीरज को। साक्षी कभी जब ये बातें अपनी माँ से कहती तो माँ भी कहती, बेटा पति पत्नी के बीच ऐसी बातें होती रहती हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोच। और माँ की बातें सुन कहीं ना कहीं साक्षी को भी लगता कि वो ज्यादा ही सोच रही है। बोझिल सी साक्षी अपने ख्यालों में खोई ही थी कि अचानक से नीरज ने आवाज लगाई, साक्षी साक्षी कहाँ हो तुम? मैं यही हूं, बोलो। बोलो क्या? तैयारी शुरू करो, हम दोनों घूमने चलेंगे। अरे बाबा क्या हो गया, अब मुस्कुरा भी दो साक्षी। साक्षी बहुत खुश थी, दोनों एक दूसरे के साथ हर बात को भूल बस खोसे गए।

दोनों वहां से वापस लौट कर आ गए। साक्षी बहुत खुश थी, उसे लगा अब सब ठीक हो गया। लेकिन ठीक तो तब होता जब किसी को ये लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। नीरज के लिए तो ये बातें आम थी। उसने बचपन से यही देखा था कि पापा माँ को कुछ भी कह देते या कभी हाथ भी उठा देते तो माँ कभी कुछ नहीं कहती, और दोनों आज भी साथ हैं। लेकिन साक्षी के लिए ये बातें आम नहीं थी, उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? मेरी कोई मर्जी नहीं? क्या शादी का मतलब यही है कि मेरे पति को यह अधिकार मिल गया कि वो मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? साक्षी ये सोच ही रही थी कि नीरज घर पहुंचा और साक्षी को ढूंढते हुए आवाज देने लगा, साक्षी साक्षी। और वहीं साक्षी अपने ख्यालों में खोई सोच ही रही थी कि नीरज कहता है, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा? आखिर क्या करती हो घर में? मैं बाहर से थका हारा आया हूं और तुम? साक्षी गुस्से में बोलती है, तुम क्या नीरज? मुझे बहस नहीं करनी तुमसे साक्षी, मगर मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं रह सकती। शादी हुई है हमारी, अपना सब कुछ छोड़ तुम्हारे साथ हूं, जीवन साथी हूं तुम्हारी। तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं कि तुम्हारा जब जी चाहा जैसे चाहा नचा लिया। प्यार करती हूं तुमसे, लेकिन खुद के आत्मसम्मान को दांव पर रखकर नहीं रह सकती। ये कह साक्षी टूट पड़ी।

नीरज पुतपना साक्षी को देख रहा था। साक्षी की आंखों से बहते आंसू और उसकी कही बातें नीरज को अंदर तक झंझोर देती है। वो आगे बढ़ साक्षी के पास गया, उसके आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शेरनी को दहाड़ना भी आता है। मुझे माफ कर दो साक्षी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। सच कहा तुमने, सच कहा कि तुम अपना सब कुछ छोड़ मेरे पास आई हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इतना प्यार सम्मान अधिकार दूं कि तुम्हें अपने घर की याद न सताए। लेकिन क्या करूं, हमारे घरों में लड़कियों को तो सिखाया जाता है कि किस तरह रहना है, कैसे ससुराल में सबका ख्याल रखना है, अपने दायित्वों को कैसे निभाना है, लेकिन लड़कों को नहीं सिखाया जाता कि जब एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे घर आती है तो उसके साथ कैसे रहना है, उसके प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभाना है। लेकिन लेकिन गलती मेरी है और सच कहता हूँ, दोबारा नहीं होगी। तुम्हारा नीरज परफेक्ट नहीं, मगर तुमसे प्यार परफेक्टली करके दिखाएगा।

हाँ तो देखा बहनों किस तरह से नीरज और साक्षी की ये कहानी थी बेहद खास। तो दोस्तों बहनों हम ये देखते हैं कि जो भी पुरुष आज हमारे समाज में है वो अपने घर से इस तरह के पुरुष अपने घर में ये सीख नहीं पाते हैं कि किस तरह से महिलाओं का हम सम्मान करें, उनका आदर करना चाहिए हमें, उनकी सोच का, उनकी जो भावनाएं हैं उसका हम ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें। चाहे आपके घर की माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी आपके घर की भाभी हो, बुआ हो, कोई भी हो, आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान अवश्य करें। और ये सिखाने की का जो जिम्मा होता है मैं बहनों वो हम पर ही है, क्योंकि जो भी पुरुष आज हमारे समाज में है वो उनकी परवरिश हमने ही तो की है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि घर में जो आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी कोई भी सदस्य हो परिवार की, उसका सम्मान उतना ही करें जितना कि पुरुष वर्ग के लोगों का करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सम्मान की हकदार नहीं है। तो बहनों हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो घर के बच्चे हों वो महिलाओं का सम्मान करना सीखें। तो दो बहनों आपको साक्षी और नीरज की कहानी कैसी लगी ये हमें बताइएगा ज़रूर। उसके लिए हमारा पता आपको तो पता ही है, फिर भी हम आपको बता दें, हमारा पता है नारी लोक कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 8120001। तो अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, नारी लोक कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
3: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
4: Hello children.
5: Hello ma'am.
6: Hello ma'am.
4: Hello, hello. How are you all?
5: We are fine ma'am.
7: I am fine ma'am.
8: How are you ma'am?
4: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
5: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am.
4: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes, ma'am.
8: Pets are so lovely.
4: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
4: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
4: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
4: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
4: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
4: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
4: Can you name some birds?
7: Sparrow.
4: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
8: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
4: Yes, peacock is a colorful bird.
11: Ma'am, parrot.
4: Oh yes, parrot is a mimic bird. But children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
12: Any guesses?
4: Okay, I'll give you a clue. It calls

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
0: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: देखभाल में लगा रहता है।
1: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
2: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
1: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
2: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
1: हाँ दीदी,
2: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
1: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग के कलाकार हैं तेज नारायण चौधरी एवं साथी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए देवी गीत से।

0: के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम।

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: निर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाईब्रेरी का उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हो रही इन पहलों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना है।
1: हमारे प्रयास ये है केंद्र सरकार के कि हर राज्य में जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है वो सबसे बढ़िया रहे, सारे बाकी राज्यों से हो या बाकी बड़े शहरों से जो वो सबसे कनेक्टेड रहे, तो उसके ऊपर जरूर हमारा प्रयास भी रहेगा और हमारे तरह से सपोर्ट भी रहेगा। यात्रियों में एक अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छी मांग भी रही है ये उड़ान यात्री कैफे के तहत। उड़ान यात्री कैफे का मकसद ये है कि कम दाम में एयरपोर्ट पे भी खान पान की व्यवस्था हो।
0: राज्य में सामने आए करोड़ों रुपए के ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन विभागों में फर्जी तरीके से सरकारी राशि की निकासी हुई है वहां से डीडीओ को तुरंत हटाया जाए। श्री किशोर ने इस सिलसिले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर द्वारा भारत का खंडित नक्शा जारी करने पर हमला बोला है। मरांडी ने इसे देश की अखंडता पर प्रहार बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सार्वजनिक माफी की भी मांग की। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कल रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। रांची में आयोजित CSR कॉन्क्लेव 2026 में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य राज्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों को और प्रभावी बनाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बेहतर गति मिल सके। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो प्रखंड में सिंगार सराय से कैरो समेत 3 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि मांडर विधानसभा में विकास की यह यात्रा जारी रहेगी और सभी वायदे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाचार को एक दीपक बताते हुए कहा है कि यह पूरे समाज को प्रकाशित करता है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोग इसी आदर्श के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने आचरण को संतुलित बनाने के लिए शास्त्रों के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सैंडल ATIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहरे स्टोरी के साथ आपसी बैठक की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की

0: ब्लू थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान लिज्जत पापड़ उद्योग की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विकेंद्रित उत्पादन का यह मॉडल महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बनाता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए उपायुक्त और एसएसपी ने 112 पेट्रोलिंग बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सायरन, ब्लिंकर और जीपीएस से लैस इन बाइकों की सीधी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी, जिससे शहर के तंग इलाकों में भी पुलिस रिस्पांस टाइम बेहतर होगा।
2: धनबाद पुलिस के सभी थानों को 45 स्टेट ऑफ दी आर्ट नई बाइक जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है वो मुहैया कराया गया है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे फोर व्हीलर नहीं जा पाते हैं और रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 75,157 जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपए प्रति किलो है। थाईलैंड में आयोजित थर्ड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम का कोनेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आधुनिक शूटिंग किट देने की घोषणा की है।
3: बच्चे एक होनहार है, चाहती है आगे बढ़ना, तो हमने इनसे कहा है कि तुम इतना चिंता मत करो, वो टोटल लिस्ट हमको बना करके दे दो, जहाँ कहीं से भी होगा जैसे भी होगा हम उस सारे शूटिंग की जो भी सामग्री होगी वो हम व्यवस्था कर देंगे।
1: हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में चौथी ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस मुकाबले में विदेश सहित देश के 13 राज्यों से लगभग 272 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनके बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ। कहा, यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल। राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट शुरू। देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। आज लोकरंग के कलाकार हैं तेज नारायण चौधरी एवं साथी। इनके स्वर में अब आपको हम सुनवाते हैं ये 12 माशा गीत।

इस लोकगीत के साथ ही संपन्न होता है लोकरंग कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है घर आंगन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज गर्मी के साथ साथ उमस भी बहुत ज़्यादा है, जिससे जनमानस का हाल बेहाल है। ऐसे में बहनों, मिट्टी के घड़े का पानी पिए, या यूँ कहे कि खूब पानी पिए, और यह शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। और घरेलू ठंडे पेय जैसे दिन भर में सत्तू का घोल, पुदीने का रस, छाछ जिसे मट्ठा भी कहते हैं, आम का पन्ना या नींबू पानी जरूर पिए। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होने देता, जिससे आप गर्मी में जो होने वाली गर्मी से होने वाली परेशानियां हैं, कमजोरी हैं, उससे आप बच सकती हैं। बहनों, खाना हल्का और ताज़ा खाएं, विशेष रूप से दोपहर का खाना, तथा बासी या भारी खाने से बचें। बहनों, उमस की वजह से खाना खराब भी जल्दी होता है और पचने में भी भारी होता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है और गर्मी और ज़्यादा लगती है। इसलिए हल्के भोजन करें, फल फूल

खीरा इत्यादि का सेवन करें, तरबूजे का, खरबूजे का, जिससे कि शरीर में ठंडक बनी रहे और गर्मी जो बहुत ज़्यादा हो रही है उसका असर भी कम पड़ें। बहनों, चूंकि हर घर में और हर जगह विशेषकर ग्रामीण इलाकों में एसी और कूलर की व्यवस्था हर कोई नहीं कर पाते, ऐसे में घर को ठंडा रखने के लिए देसी तरीके अपनानी चाहिए, जैसे घर के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लटकाकर उन पर पानी छिड़क दें। इसके बाद बहनों, सुबह या शाम में खिड़की हमेशा तभी खोले जब ठंडा हो, जब बहुत ज़्यादा धूप हो तो खिड़की बंद ही रखें। ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप धूप से और घर में भी अगर हैं तो आप परेशानियों से, गर्मी से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। साथ ही बहनों, जब भी बाहर निकलें तो छतरी लेके, दुपट्टा लेके निकलें, क्योंकि अभी जो धूप है बहुत ज़्यादा है, उमस है, लू लगने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे में पानी खूब पी के निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो खाना खा के निकलें, क्योंकि खाली पेट में लू ज़्यादा लगने की संभावना होती है। इसी के साथ बहनों, आगे बढ़ते हैं और आज के दिन में क्या विशेष है इस पर बात करते हैं। बहनों, आज है 20 मई और आज के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। बहनों, यह दिन उन नन्हे अथक परिश्रम करने वाले जीवों को समर्पित है जो हमारी धरती के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। बहनों, मधुमक्खियां ना केवल हमें मीठा और औषधीय गुणों से भरपूर शहद देती है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। बहनों, 20 मई को स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन बी कीपिंग के प्रणेता एंटोन जेम्सा की जयंती का प्रतीक है। उनका जन्म 20 मई 1934 को हुआ था। उन्होंने मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों की नींव रखी और दुनिया को यह सिखाया कि इन छोटे जीवों के बिना, जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए, इनसे कैसे लाभ लिया जा सकता है। बहनों, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि में मधुमक्खियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। मधुमक्खियों का योगदान केवल शहद बनाने तक ही सीमित नहीं है, वे प्रकृति की सबसे कुशल परागकण यानी कि पॉलिनेटर्स हैं। परागण यानी कि पॉलिनेशन और खाद्य सुरक्षा में इनका क्या योगदान है, वह सिर्फ इस बात से पता लगाया जा सकता है कि खाद्य फसलों का 33% फसलें पूरी तरह से परागण पर निर्भर करती है और इनमें करीब 80-90% परागण अकेले मधुमक्खियों द्वारा होता है। बहनों, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 दिसंबर 2017 को की गई थी, जिसके बाद 20 मई 2018 को पहली बार आधिकारिक रूप से विश्व मधुमक्खी दिवस पूरे विश्व में मनाया गया था। बहनों, फसलें और फल जैसे कि सेब, बादाम, संतरा, टमाटर, मिर्च, कॉफ़ी और कई तरह की दालें और तिलहन जो हैं पूरी तरह से मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो इन फसलों का उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे वैश्विक भुखमरी और कुपोषण का खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही बहनों, मधुमक्खियां केवल इंसानों की फसलों का ही परागण नहीं करती, बल्कि वे जंगली फूलों और पौधों के विकास में भी मदद करती हैं। ये पौधे जंगल का आधार बनते हैं जो वन्य जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार मधुमक्खियां पूरी खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन को जीवित रखती है। बहनों, मधुमक्खी पालन या एपिकल्चर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। विशेष रूप से भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह किसानों की आय को दुगुना करने का एक बेहतरीन जरिया है। बहनों, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मधुमक्खियों से हमें केवल शहद ही नहीं मिलता, बल्कि रॉयल जेली, प्रोपोलिस, बी वैक्स जिसे मधुमक्खी का मोम भी कहते हैं, बी वेनम जिसे मधुमक्खी का जहर, ये सब प्राप्त होता है और जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और पारंपरिक दवाओं में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बहनों, मधुमक्खी पालन के लिए किसी उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए खेतों के किनारे पर या बंजर जमीन पर भी बक्से रखकर किया जा सकता है और यह महिलाओं और भूमिहीन किसानों के लिए रोजगार का एक

सशक्त माध्यम हो सकता है। साथी बहनों, अध्ययनों से पता चला है कि जिन खेतों के पास मधुमक्खी पालन किया जाता है, वहां परागण के कारण फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में 20 से 40% तक की वृद्धि होती है। बहनों, आधुनिक मधुमक्खियों पर मंडराता आधुनिक संकट आज वैज्ञानिक और पर्यावरणविद को इस बात को लेकर बेहद चिंतित करता है कि दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और इस संकट के पीछे पूरी तरह से मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं, जैसे कि कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और आवास का नुकसान, एकल खेती। इन सभी वजहों से मधुमक्खियों की जो कुछ प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। यदि मधुमक्खियां इस धरती से विलुप्त हो गई तो मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथित कथन के अनुसार मानव जाति के पास जीने के लिए केवल 4 साल बचेंगे, इसलिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इनका संरक्षण हम कई स्तरों पर कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर अपने बगीचों, छतों या बालकनी में स्थानीय फूलों के पौधे जैसे गेंदा, सूरजमुखी, तुलसी, नीम इत्यादि लगाकर, मधुमक्खियों को गर्मियों में पीने के लिए एक उथले बर्तन में साफ पानी और उसमें कुछ कंकर रखना ताकि वे डूबे नहीं, रासायनिक कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक जैविक खाद का उपयोग करना, और सरकारी स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण देकर, जैसे भारत में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, जिसे हम NBHM भी कहते हैं, ये सारे प्रयास के द्वारा मधुमक्खियों को बचाया जा सकता है। और बहनों, विश्व मधुमक्खी दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक चेतावनी और संकल्प का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर छोटे से छोटे जीव का एक विशिष्ट महत्व है। मधुमक्खियों के बिना एक स्वस्थ और समृद्ध धरती की कल्पना असंभव है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम विकास की अंधी दौर में इस मूक पर्यावरण योद्धाओं को ना भूलें। आइए, इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को मधुमक्खियों के अनुकूल बनाएंगे, कीटनाशकों का प्रयोग कम करेंगे और जैव विविधता को इस सुंदर चक्र को अक्षुण रखने में अपना योगदान देंगे। मधुमक्खियां बचेंगी तभी हमारा पर्यावरण और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ विज्ञापनों को।

0: AIR at 90.
1: सभी श्रोता बहनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, क्यों ना कुछ भजन सुना जाए, तो सुनते हैं यह शिव भजन।

0: बहनों, इस शिव भजन सुनने के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और गायक का सोनी कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, संस्कृति के हस्तांतरण की जब बात होती है या परंपराओं के निर्वहन की, तो शिक्षित युवा पीढ़ी लिखित दस्तावेजों के माध्यम से अपनी संस्कृति, इतिहास और रीति रिवाजों को अधिक गहराई, पारंपरिक ज्ञान का आधुनिकीकरण में भी साक्षरता हमें पुरानी परंपराओं का तार्किक विश्लेषण करने और उसमें से प्रासंगिक तत्वों को चुनकर आधुनिक समय के अनुसार ढालने में सक्षम बनाती है। तो बहनों, एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते हैं कि परंपराओं के निर्वहन में साक्षरता की क्या भूमिका है, और वार्ताकार का नाम है सुषमा गुप्ता। तो सुनते हैं यह वार्ता।
1: आज साक्षरता बढ़ने के कारण बहुत सारी चली आ रही परंपराओं का निर्वहन खतरे में पड़ गया है। उनका महत्व कम हो गया है या उनका पालन जरूरी नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए, पहले हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था। परिवार के हर सदस्य के भविष्य की सुरक्षा थी, आपस में प्रेम था, परंतु आज परिस्थिति विपरीत है। बिरले ही कहीं कोई संयुक्त परिवार का उदाहरण मिलता है। हम दो और हमारे दो के नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। माँ बाप अपनी खून की कमाई से बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं और वे परंपरा के विरुद्ध प्रेम विवाह कर लेते हैं। माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाते हैं। क्या उच्च शिक्षा अथवा साक्षरता उन्हें यही शिक्षा देती है कि हमारे पूर्वज जिस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं उसकी मर्यादा को तार तार कर दें? शायद कदापि नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सही परंपराओं के निर्वहन के लिए साक्षरता को वरदान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि अभिशाप के रूप में। अब हम आज के समय के आलोक में अभी भी चली आ रही कुछ गलत परंपराओं पर बात करें, जैसे कि महिलाओं, खासकर पर्दे में रहने वाली महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर रोक, उनका प्रसव घर में ही करवाना, घर की कच्ची शौचालय का उपयोग करना, भयंकर बीमारियों का आमंत्रण देना है। आज के साक्षर युग में इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी सुदूर गांवों में यह परंपरा है कि दूल्हे की उंगली को विवाह करने जाने से पहले घायल कर उससे खून निकाल कर उस खून से उसका तिलक किया जाता है। अगर टेटनस हो गया तो यह कैसी शादी होगी? यह परंपरा गलत है। साक्षरता बढ़ने के साथ इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी महिलाओं के बीच ओझा, गुनी, साधु, फकीर काफ़ी मशहूर हैं, जबकि ये उन्हें सिर्फ ठगते हैं। आज के वैज्ञानिक साक्षर युग में बांझपन और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन महिलाओं के अंदर यह विश्वास बैठा हुआ है कि सिर्फ साधु बाबा, औघड़ फकीर ही उनकी बांझपन दूर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। आज शिक्षा के विकास के साथ साथ देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इस गलत परंपरा को हमें मिटाने में काफ़ी सफलता हासिल हुई है, लेकिन अभी और प्रयास की आवश्यकता है। गाँवों में आज भी सैकड़ों लोग सांप, बिच्छू एवं अन्य जहरीले जीव जंतुओं के काटने से मर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ओझा जी उनका झाड़ फूँक कर रहे थे। अस्पताल ले जाने पर ठीक नहीं होगा, ओझा जी ही विष पी जाएंगे और पीड़ित व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। काहे को पीड़ित व्यक्ति जिंदा होगा? पता चला कि ओझा जी ही भाग गए। आज हमें बढ़ती साक्षरता के मद्देनज़र इस ओझा गुनी वाली हानिकारक एवं विनाशकारी परंपरा को समाप्त करना होगा। विज्ञान के महत्व को समझना और समझाना होगा। अब हम फिर कुछ अच्छी परंपराओं के निर्वहन के लिए

0: साक्षरता की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर गौर करें। आज हम विदेशों में कारगर सोशल सिक्योरिटी एवं हेल्थ कार्ड योजना परंपरा इत्यादि के विषय में पढ़ने और सुनने को मिलता है। अपने भारत देश में भी अब लगभग मिलती जुलती स्वास्थ्य योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना कारगर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ प्रगतिशील देश अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की परंपरा का मिसाल पेश कर रहे हैं, आज हम भी शिक्षित नागरिक होने के नाते अपने विवेक से उचित अनुचित परंपराओं के निर्वहन के लिए आगे आ सकते हैं। अपने स्वजनों के लिए भी समय नहीं है तो क्या माना जाए। पुरानी परंपरा जो 13 दिनों में श्राद्ध कर्म पूजा पूरा करने की है उसे समाप्त कर दिया जाए, शायद नई परंपरा को ही अपनाने को विवश होना पड़ेगा। यह आज की साक्षरता के विकास की मांग है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी परंपराओं एवं साक्षरता में अन्योन्याश्रय संबंध है। सिर्फ हमारे विवेक की जरूरत है, किसे अपनाएं, किसे भूलें या त्यागें। आज हमारा विवेक भी काफ़ी विकसित हो चुका है। मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि समय के अनुसार परंपरा का अनुपालन अर्थात निर्वहन सुनिश्चित करने हेतु साक्षरता रूपी अलौकिक विवेक का बुद्धिमत्तापूर्ण सिर्फ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

घर आंगन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, जल्द TRE4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए

0: आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज बुलाई हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने हड़ताल का समर्थन किया है। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर दवा दुकानें आज बंद रखी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एसएसबी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें 227 जवानों ने दीक्षांत प्राप्त किया। इस अवसर पर आईजी ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अररिया जिले के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत मकराइन, डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू खनन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम नीलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन की 2:15 होने वाले हैं। आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL-PGM-MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य

0: समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
3: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने अस्पतालों में

0: हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति बंटी और बबली फिल्म से। आवाजें हैं अलीसा चिना, शंकर महादेवन और जावेद अली की। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

Tim, Tan, Tim.

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जब वी मीट फिल्म से। गायिका है श्रेया घोषाल, गीत इरशाद कामिल के हैं, संगीतकार हैं प्रीतम।

Akashvani at 90. Akashvani at 90. 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल. पुरानी यादें नया जोश है. देश का रेडियो अब भी बॉस है. आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल.

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इश्क से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू एवं उदित नारायण की। गीत रचना राहत इंदौरी की है। इसे संगीत बद्ध किया है अनु मलिक ने।

AIR at 90. कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हेलो ब्रदर से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू एवं अलका याग्निक। गीतकार हैं सुधाकर शर्मा और संगीतकार अनु मलिक।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है रविंद्र संगीत कार्यक्रम। आज रविंद्र संगीत कार्यक्रम की गायिका हैं लोपामुद्रा मित्रा। आकाशवाणी में

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं रविंद्र संगीत कार्यक्रम गायिका है लोपा मुद्रा मित्रा

रविंद्र संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। गायिका थी लोपा मुद्रा मित्रा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है समोसर में देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समोसर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब से संध्या 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

0: फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते ही

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बात है आरती है, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ आता है ना अच्छी तरीके से, जिस भाषा को जानते हैं।
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने तो देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने निकाल के हो गए, अब हम क्या सीखेंगे।
0: हाँ,
1: ये कभी मत मन में लेकर
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डिमेंशिया जो होता है मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: है।
1: क्या
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना
1: जी,
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ। आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
1: जी,
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है, है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में।
0: अच्छा लगा,
1: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
0: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है, और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, अपने मन से सीखिए।
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं
1: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा बोल लेते हैं,
0: चौंक जाते हैं, और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है,
1: बढ़ जाता
0: देखने
1: है।
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

घट की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बस राखे कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उसपे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों

0: विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ, पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आए ना। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल
1: कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, पीले रंग का होता है, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है।
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: वो जो उनके अंदर चीजें ना, वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी।
1: बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए, आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
0: भाषा कभी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी,
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना।
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहाँ समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहाँ सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और धाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो

0: ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
0: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
1: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
0: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
0: बिल्कुल,
1: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
0: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
1: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
0: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची

0: इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें। आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं। और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पर मिली जाएगी।
1: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यूरोस और विविध भारती पूरे परिवार को, इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जो वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
1: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की, और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
0: नहीं, जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
1: जी
0: अल्मोड़ा हुआ।
1: अरे गजब, पहाड़ों पर।
0: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
1: जी,
0: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
1: अच्छा।
0: तब तक शुरू नहीं हुआ था
1: जी।
0: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
1: जी, जी।
0: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
1: जी, जी।
0: वो एक अलग अनुभव था
1: जी।
0: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
1: हाँ।
0: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
1: जी।
0: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो,
1: हाँ,
0: कभी रहा ना हो,
1: हाँ, हाँ,
0: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन वो गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
1: अच्छा,
0: 86 में।
1: क्या बात है, तो ये तो पंत जी का शहर था,
0: हाँ,
1: पंत जी का
0: हाँ,
1: इलाका
0: हाँ,
1: था, तो वो तमाम चीजें
0: और वो भी सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पर रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना,
1: यस,
0: तो ये सब भी
1: उदयशंकर जी का,
0: उदयशंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
1: जी।
0: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे रहते
1: कैसे।
0: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं कि जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
1: पहाड़ों में
0: पहाड़ों में कैसे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये था
1: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो ये सपनों की नगरी थी
1: जी,
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है,
1: हाँ, हाँ।
0: उस पर वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
1: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें हुआ,
0: वो लंबी लाइनें हुआ करती थी, तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटोपिल से किंग सर्कल आना, वहाँ से पैदल
1: जी,
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
0: तो
1: है,
0: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
1: जी, जी।
0: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
1: जी,
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार देंगे,
0: ये उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
1: चरम पर थी,
0: चरम पर थी। फिल्म

0: संगीत जितनी पॉपुलर थी
1: जी,
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीज
1: बजाया करते थे
0: लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है।
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: जो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है।
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था। इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
1: जी,
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह,
0: ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ। तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी
1: हाँ।
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओ हो,
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी जी जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है कंपोज है
1: वो
0: उसको, हाँ, वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब

0: क्या बात है। और जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी, उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी जी
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे,
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके,
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इन दोनों
0: में
1: के साथ
0: गाया।
1: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ,
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मेरा कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए, मजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी।
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरू
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की बात
1: है
0: है
1: ना।
0: ये,
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी।
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजित एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला के, मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी,
1: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे हाँ, हाँ, हाँ, मतलब अब तो शुरुआत कर रहे थे जब,
1: हाँ,
0: जी
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी।
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ,
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
0: जी, जी,
1: वो चले गए
0: जी।
1: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
0: जी जी जी
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज

0: हक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और टेक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ। फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला।
0: रिबन खोला ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए। तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ,
0: पूरा,
1: बाकायदा और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ है।
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे।
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब।
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब।
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत।
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा मिस
0: आपको मालूम था
1: हुआ।
0: कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया
1: क्या
0: था।
1: बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ

0: और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे, उजाले उनकी यादों के, मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूँगा तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह से
0: सब चीजों को संभालते
1: थे, सब संभालते थे, तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट

0: था वो था,
1: बिल्कुल।
0: और ऑपरेटर को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
1: जी,
0: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
1: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
0: थे। ऐसा कम होता है
1: जी।
0: तो मैं, हमने तो ऐसे ऐसे दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
1: खयाम
0: साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए
1: जी,
0: आनंद जी आए
1: बिल्कुल,
0: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
1: रवि जी आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: खयाम साहब
1: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
1: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं, और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं, और वहीं एक घंटे बात हो रही है।
0: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था
1: जी,
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
1: बिल्कुल,
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके
1: ले सकते
0: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास नहीं है।
0: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी,
1: जब
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर एक,
0: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए
0: जी
1: हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो इस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान पे, हमारे फादर लॉ, दोनों ब्रदर लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है, लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था।
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो

0: मान जाए। अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम आर्य समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी। हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
1: जी
0: वो सब
1: जी
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे दो तीन जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं
1: अरे हाँ,
0: अपने घर चला आया,
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
1: हाँ
0: कि हम मैंने शादी कर ली है,
1: हाँ
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं
0: उम्मीद ही
1: सकता
0: होंगी
1: था।
0: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
1: हाँ
0: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस हो रहा था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
1: हाँ
0: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
1: हाँ
0: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
1: हाँ।
0: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
1: गजब।
0: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
1: हाँ
0: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ हुआ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
1: हाँ
0: उसको पूछे, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे,
1: हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे।
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया जब
1: जी,
0: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: और उन्होंने
1: ये
0: कहा
1: है,
0: हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं,
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह,
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर,
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा,
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना,
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: गम
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या
0: छुपाना
1: बात है
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं और अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी, तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी,
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था
1: जी जी,
0: मतलब किसी
1: लाइट होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह,
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।

0: से हम।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हाजिर हैं हम लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त आमिर खैर मकदम करता हूँ आप युवाओं के चहेते कार्यक्रम युवावाणी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, चलिए जान लेते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस पर। आगे कार्यक्रम में मार्गदर्शन में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता। कार्यक्रम के प्रश्न मंच सेगमेंट में होंगे आपसे एक सवाल। डेली ट्रिविया फन फैक्ट में जानेंगे कुछ रोचक तत्वों के बारे में। कार्यक्रम के अंत में हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ हालिया घटनाक्रमों से। साथ साथ कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला भी चलता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक मनमोहक गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म स्त्री 2 से। आवाज़ें दी हैं वरुण जैन और शिल्पा रॉय ने।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

AIR at 90. अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः स्वागत है दोस्तों। चलते हैं आज के चर्चा की ओर। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से जीव की जो दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन धरती पर जीवन को बनाए रखने में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की। हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण और खेती के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये फूलों से पराग इकट्ठा करते समय पॉलिनेशन करती हैं जिससे फल, सब्जियाँ और अनाज पैदा होते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने साल 2017 में 20 मई को वर्ल्ड बी डे घोषित किया था। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन स्लोवेनिया के प्रसिद्ध मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ एंटोन जोंसा का जन्म हुआ था। उन्हें आधुनिक मधुमक्खी पालन का जनक माना जाता है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं बनाती बल्कि हमारी खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता को बचाने में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन दोस्तों, आज मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। इसके पीछे का कारण है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। अगर मधुमक्खियां खत्म होने लगी तो खेती और भोजन उत्पादन में गंभीर असर पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम मधुमक्खियों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके। अपने घर के आसपास फूलों वाले पौधे लगाएं, जैविक खेती को बढ़ावा दें, जहरीले कीटनाशकों का कम उपयोग करें, पेड़ पौधे और जंगलों की रक्षा करें। तो आइए इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करेंगे, मधुमक्खियों को बचाएंगे। दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। चलते हैं गीतों की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर 2 से। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की।

0: श्रोताओं, गीत के बाद चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मार्गदर्शन की ओर, जहां आप सुनेंगे भेंट वार्ता जिसका शीर्षक है पत्रकारिता और युवा, जिसके भेंट वार्ताकार हैं मृत्युंजय और भेंट करता है रविंद्र कुमार।
1: युवा दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े प्रतिभाशाली पत्रकार मृत्युंजय जी उपस्थित हैं। आज हम उनसे इसी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, पत्रकारिता क्या है, इस बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल जो बहुत से हमारे दोस्त भी जानना चाहते हैं और हमारे मन भी में भी है, कि पत्रकारिता क्या है।
2: पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वो है जो समाज में चल रहे किसी प्रकार की गतिविधियों को हम अपने अखबार या चैनल या टीवी के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पत्रकारिता में एक सीमाएं होती हैं, उसमें एक सामाजिक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। अब समाज में चल रही किसी तरह की गलत सूचनाओं को हम उसी तरह से सामने अपने पाठकों के सामने परोस नहीं सकते। अगर समाज में कुछ दूसरी सूचनाएं हैं तो उसको परिष्कृत करके, उसको साफ़ सुथरे ढंग से, उसको सही तहकीकात करके, सही पड़ताल करके, सही तथ्यों के साथ उसको सामने लाना होता है। पत्रकारिता यही है। हम अपने पाठकों या श्रोताओं या दर्शकों को किसी भी घटना की तथ्यपरक और सही जानकारी दें,
1: जिससे समाज में अगर किसी तरह की भ्रांति हो,
2: भ्रांति नहीं फैले, कोई अफवाह नहीं फैले और समाज सही दिशा में निर्बाध गति से चलता रहे।
1: जी, तो ये तो ही आपकी पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है इसके बारे में। और अगर सीमाओं की बात करें हम, कि पत्रकारिता की कुछ सीमाएं होती होंगी अपनी, इस क्षेत्र में आने के बाद आपको कुछ कोड्स बता दिए जाते होंगे कि आप इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा अपने पत्रकारिता जीवन में, तो उसके बारे में अगर आप बताएं कुछ हमें।
2: जी, आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारा पत्रकारिता और पत्रकारों की एक सामाजिक जिम्मेदारी बहुत महती होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारी सीमाएं ये हैं कि अगर समाज या मान लीजिए दंगों, कहीं दंगे चल रहे हैं
1: जी,
2: तो दंगे में हमारी सीमाएं ये हैं कि दोनों पक्ष का नाम न दें, किसी दूसरे पक्ष का नाम न दें, किसी जाति समूह का नाम न दें, किसी वर्ग विशेष का नाम न दें, या कोई विभत्स घटना घटी हो या किसी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो उस पीड़ित पक्ष का नाम नहीं दें, इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है धूमिल होती है। और ये सीमाएं हमें खुद तय करनी होती हैं। हालांकि पत्रकारों, पत्रकारिता या पत्रकारों पर कोई अलग से सीमाएं नहीं लगाई गई हैं, खुद से हम लोग सीमित हैं, खुद से अपने आप पर अंकुश लगा के ये जो गलत,
1: जिससे समाज में गलत संदेश न जाए। जी, तो आपसे हम अगर ये जानना चाहें कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आए, इसके ग्लैमर को देखकर, चकाचौंध भरी पत्रकारिता की दुनिया को देखकर कि लोग टीवी पर रेडियो पर सुनते हैं, या फिर आपके अंदर पहले से इसके प्रति रुचि थी?
2: पत्रकारिता के पहले से भी रुचि थी, और हमारे पत्रकारिता के पहले रुचि थी, और हमारे पिताजी भी जो हैं पत्रकार थे, उनको देख के हमने बचपन से ही जो है अखबार में देख लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। और बाद में जब पढ़ाई पूरी हुई, बीए कंप्लीट हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो सोचा कि अब इसी क्षेत्र में जाना है, इसलिए हमने उसके बाद पत्रकारिता को अपना करियर बनाया, पेशा बनाया और लिखना पढ़ना जारी रखा।
1: अच्छा, तो यूँ अगर कहें कि पत्रकारिता आपको विरासत में मिली, और जब भी कोई परेशानी आती होंगी, जब भी कोई समस्याएं होती होंगी, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने पिताजी से इस बारे में।
2: हाँ, कभी कभी लिखने में या खबरों के लिखने में किस तरह से, किस एंगल से दिया जाए, तो अपने पिताजी से, समुनाथ झा उनका नाम है, उनसे हम हमेशा कभी किराए मशुरा अभी भी लेते हैं
1: जी,
2: और उनका मार्गदर्शन जो है हमेशा उनको मिलता रहता है।
1: आपको क्या लगता है खबरें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो पत्रकारिता का एक विस्तृत क्षेत्र, बड़ी तेज़ी से पत्रकारिता बढ़ी है, पहले प्रिंट मीडिया आई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, टीवी रेडियो, और फिर अब सोशल मीडिया, जिसका बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है इंटरनेट के आने से, तो पत्रकारिता जैसे एक ग्लोबल वैश्विक हो चुका है, तो इस बारे में आप
2: जी
1: क्या
2: आपने
1: कहें?
2: सही कहा, पत्रकारिता का दायरा बढ़ गया है क्योंकि तकनीक का दायरा बढ़ गया है
1: जी।
2: पत्रकारिता उदंत मारतंड से शुरू जो हुई थी वो अब नहीं रही, या आज़ादी के आंदोलन में जो दिनमान और दूसरी पत्रिकाएं निकलती थी
1: जी,
2: उस दौर से पत्रकारिता काफ़ी आगे बढ़ गई। अब लोग ऑनलाइन जर्नलिज्म करते हैं, इसे अब लोग अपने हाथ मोबाइल रखकर खबर पढ़ लेते हैं, और खबरों को भी उसी तरह से लिखा जा रहा है। हमें भी बताया जाता है जब खबर उस तरह से लिखें जो ज़्यादा बोझिल ना हो, खासकर युवाओं को केंद्रित में रख के खबर लिखें, उनको दिशा निर्देश देने वाली खबर लिखें,
1: साफ सरल और सटीक
2: साफ
1: होने।
2: सटीक लिखें, खासकर इसमें युवाओं को कोई समझ मिले या युवाओं की तरक्की हो, तरक्की के अनुसार खबर लिखी जानी चाहिए। ये अब ये पत्रकारिता का नया मापदंड कहिए या नया मानक कहिए, नया विस्तार कहिए, नया विस्तार कह सकते हैं आप इसको। अब तो सोशल मीडिया के जरिए भी अब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं।
1: वैश्विक पैमाने की बात हम इसलिए कर रहे थे मृत्युंजय जी, क्योंकि अभी देखिए किसी विकसित देश की अगर हम बात करें, किसी विकसित देश में जिस तरह की शिक्षा पद्धति है और अपने देश की जो शिक्षा पद्धति है, तो मीडिया कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ से अपनी शिक्षा पद्धति की तुलना करते हैं। तो ये भी एक कदम है अपने देश को विकास की ओर ले जाने में, एक महत्वपूर्ण कदम हम मान सकते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, मान सकते हैं हम पत्रकारिता के जरिए दूसरे देशों से कंपटीशन कर सकते हैं, दूसरे देशों की चीज़ों का हालात को बताकर ये भी बता सकते हैं कि उस देश के विकास का स्तर क्या है और हमारे विकास का स्तर किस गति से चल रहा है। एक आईना होता है पत्रकारिता, आईने की तरह हम उसमें अपने आप की सही सूरत, अपनी अपनी सही सूरत या अपने समाज की सही सूरत उसमें दिखा सकते हैं, और विकास की सूरत भी उस पत्रकारिता के आईने से ही लोग अब देख रहे हैं।
1: तो हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पत्रकारिता ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे देशों से या दूसरी जगहों से अच्छी चीज़ों को लाने में महत्वपूर्ण
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: भूमिका निभा
2: और अपने
1: सकती है।
2: देश की चीज़ अच्छी चीज़ों को दूसरे देश में भेजने का भी काम कर
1: बिल्कुल,
2: रहा
1: जैसे हमारे देश की कुछ विशेषताएं जो हैं उसे
2: है।
1: दुनिया के सामने दिखाना कि हम भी कुछ
2: हाँ बिल्कुल,
1: विशेष गुण
2: हमारे यहाँ
1: रखते।
2: के लोक पर्व जो है अमेरिका में किए जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, अमेरिका में अब छठ पर्व होता है,
1: जी
2: ये पत्रकारिता और
1: दीपावली
2: अखबारों
1: मनाई जाती
2: दीपावली
1: है।
2: दीपावली तो मनाई जाती है, छठ जो बिहार का लोक पर्व है वो अमेरिका कि कई जगहों पे अब मनाया जा रहा है, लोग छोटे छोटे तालाबों में वहाँ के जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो छठ मना रहे हैं, वहाँ के अमेरिकी लोग भी अब छठ कर रहे हैं। ये पत्रकारिता और मीडिया का ही योगदान है, छठ पर्व की महिमा वहाँ तक पहुँची, अमेरिका तक
1: और
2: पहुँची।
1: सामाजिक तौर पर जागरूकता लाने में भी पत्रकारिता का
2: हाँ
1: बहुत
2: बिल्कुल
1: बड़ा हाथ
2: बिल्कुल
1: है। जैसे बहुत दबी छिपी बातें जो समाज में बहुत
2: जी
1: पहले से बहुत अच्छी अच्छाई थी जो
2: जी
1: धीरे धीरे मिटती जा रही
2: जी
1: थी,
2: जी जी
1: तो आपका आपकी जिम्मेदारी कभी कभी ये भी होती है कि उन चीज़ों को लाकर
2: जी
1: सामने फिर से उसे पुनर्जीवित किया
2: जी
1: जाए।
2: पुरानी हमारी जिम्मेदारी है कि पुरानी परंपराओं को या पुरानी संस्कृतियों को या पुराने शब्दों को जो लुप्त हो रहे हैं उनको फिर से अखबारों के जरिए, चैनलों के जरिए या रेडियो के जरिए फिर से पुनर्स्थापित करें, नई पीढ़ियों को बताएं कि हमारा पुराना संस्कार कैसा था, पुरानी संस्कृति कैसी थी या पुरानी माटी की महक कैसी थी। ये लोगों को अगर शिक्षा के बारे में हम बात करें
1: जी
2: तो शिक्षा के प्रति जागरूकता करने में पत्रकारिता का काफ़ी योगदान रहा है, कई चैनलों पे या अखबारों में शिक्षा पर विशेष अंक निकाले जाते हैं, ये बताया जाता है कि आपके शहर में शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ाई हो की जा सकती है, इससे युवाओं को भी और छात्रों को भी काफ़ी लाभ होता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षा को बढ़ावा देने में पत्रकारिता का काफ़ी योगदान है, जो भी ग्रामीण इलाकों में शिक्षण संस्थान है अगर उनमें कुछ कमियाँ हैं तो पत्रकार अखबारों के जरिए खबरों के जरिए उन्हें उजागर किया जाता है बार बार, जिससे वहाँ शैक्षणिक माहौल का विकास होता है।
1: और अभी अभी की अगर हम बात करें तो एक भीषण आपदा आई बाढ़, इस क्षेत्र में पत्रकारिता बहुत अच्छी भूमिका निभा रही थी। अभी शासन
2: जी
1: सरकार
2: जी
1: के और जनता के बीच का एक
2: जी
1: कड़ी बन रही थी,
2: जी
1: तो इस बारे में
2: जी हाँ, बाढ़ जैसी विभीषिका में कई जगह मैं भी रिपोर्टिंग पर गया,
1: जी
2: देखा कि हालात काफ़ी गंभीर और विभत्स हो गए हैं। एक मिले मुझे भिखारी मंडल वहाँ टीएनबी कॉलेजिएट में, 6 बीघे के जमीन के मालिक थे, बाढ़ ने उन्हें मजदूर बना दिया, और इस खबर हमने उस काफ़ी गंभीरता से उस खबर को प्रकाशन किया, पेजवन पर प्रकाशन हुआ उसका, उसके बाद से प्रशासन भी जागा और उनके पास गया और उनकी सारी जो समस्याएं थी खत्म की। इसके अलावा सबौर नवगछिया में जो जो बाढ़ प्रभावित थे वहाँ कई चैनलों से लोग आए, बीबीसी से तक से लोग आए, ये पत्रकारिता की जिम्मेदारी है जो बीबीसी लंदन नवगछिया को बाढ़ को देखने आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो सरकार और जनता के बीच में एक सीढ़ी के माध्यम भी कह सकते हैं
2: हाँ
1: पत्रकारिता
2: जी
1: को, और किसी भी क्षेत्र में पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए
2: जी
1: निभाती है,
2: जी
1: इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे कोई युवा दोस्त जुड़ना चाहें पत्रकारिता से, तो आपका क्या संदेश होगा उनके लिए?
2: हाँ, युवा तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, बीए तक तो कंप्लीट पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद कई सारे पत्रकारिता के संस्थान हैं उनमें वो आवेदन करें, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे भागलपुर विश्वविद्यालय में भी पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, उसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और उससे आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं,
1: जी
2: दिल्ली में है ये, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, इन सब तमाम जगहों पे आप जाके आप पत्रकारिता का आवेदन करें, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। बहुत कठिन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, उसमें सामान्य जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान की चीज़ें और करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी जाती हैं। एक रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न के बाद एक इंटरव्यू होता है, वो भी सामान्य घटनाओं पर आधारित होता है, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसको कल के 9 महीने से लेकर 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है, अगर कोई छात्र पीजी करना चाहता है तो वो 2 साल का कोर्स होता है उस।
1: लेकिन एक
2: जी
1: बात है, एक बात रोकना चाहेंगे हम, एक बात है कि पत्रकारिता में आ तो जाएं, लेकिन इसके लिए जो विशेष रूप से गुण होने चाहिए वो क्या होने चाहिए इसमें आने के लिए?
2: विशेष रूप से छात्रों को लिखने की क्षमता अपने विकसित करनी चाहिए।
1: जी
2: छात्र जो विषय पढ़े उस पर पढ़ने के साथ उस पर लिखे, जैसे कोई किताब वो प्रेमचंद की पढ़ रहा है, गोदान पढ़ रहा है, तो गोदान पर उसका अपना क्या मंतव्य है वो उस पर लिखे। ये उसका अपना मंतव्य लिखने से उसमें लेखन क्षमता और लेखन कौशल का विकास होगा। इस कारण इस तरह लिखते लिखते वो उसमें लेखन क्षमता डेवलप करेगी और ये गुण के रूप में विकसित होगा, और उस खबरों की समझ उन्हें होनी चाहिए। इसके लिए अखबार पढ़ें, डेली अखबार पढ़ें,
1: जी
2: चैनल पर खबरें देखें, प्राइम टाइम की खबरें देखें, और जिस विषय में उनकी रुचि हो, खेल में रुचि हो तो खेल की खबरें पढ़ें, राजनीति में रुचि हो तो राजनीति में की खबरें पढ़ें, अपराध में हो तो क्राइम की खबरें पढ़ें।
1: कि हमारे युवा दोस्तों को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, मार्गदर्शन में आप अभी सुन रहे थे भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे मृत्युंजय और भेंट करता थे रविंद्र कुमार। दोस्तों, कार्यक्रम के अगले सेगमेंट प्रश्न मंच में आज का सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका जवाब आप हमें कार्यक्रम के अंत में बताए गए पते पर भेज सकते हैं। दोस्तों, आज डेली ट्रिविया का सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो की फेमस सिग्नेचर ट्यून को पहली बार किस इंस्ट्रूमेंट पर बजाया गया था? इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। चलते हैं फन फैक्ट की ओर। क्या आप जानते हैं कि जब देश में नेचुरल डिजास्टर या इमरजेंसी आती है, तब भी ऑल इंडिया रेडियो कई बार लोगों तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाती है? इंटरनेट बंद हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क फेल हो सकती है, लेकिन रेडियो अक्सर चलती रहती है, इसलिए रेडियो को वॉइस ऑफ होप भी कहा जाता है। आज के फन फैक्ट में इतना ही। चलते हैं समसामयिकी की ओर, जहां जानेंगे कुछ हालिया घटनाक्रमों के बारे में। हाल ही में भारत और नीदरलैंड के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने अपने पारंपरिक संबंधों का स्तर बढ़ाते हुए इसे एक राजनीतिक साझेदारी का रूप देने का निर्णय लिया है। इस विजन को लागू करने के लिए भारत नीदरलैंड राजनीतिक साझेदारी रोडमैप 2026 से 2030 को आधिकारिक स्वीकृति दी गई है। आज के समसामयिकी में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में कारगर साबित होता है। दोस्तों, डेली ट्रिविया में पूछा गया सवाल का जवाब है, ऑल इंडिया रेडियो की फेमस सिग्नेचर ट्यून को पहली बार वायलिन और तानपुरा के कॉम्बिनेशन इंस्ट्रूमेंट पर बजाया गया था। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव हमें मेल या पत्र द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, आदमपुर भागलपुर। हमारा पिन कोड नंबर नोट करें, 812001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, phair.bhagalpur@gmail.com। दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें और सुनते रहें आप युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। अपने अपने रेडियो दोस्त

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म कयामत से कयामत तक से लिया है। अलका याग्निक एवं उदित नारायण की युगल आवाजें हैं। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत तैयार किया है आनंद मिलिंद ने।

उदित नारायण एवं अलका याज्ञिक को अब आइए सुनते हैं फिल्म अंदाज़ में। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

उदित नारायण एवं अलका यागी का गाया फिल्म राजा का एक गीत सुनते हैं। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, शादाब एवं अल्तमस फरीदी का गाया फिल्म राबता का एक गीत। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं जैम।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे, ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर श्रमिक जगत कार्यक्रम होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायक कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा एक ही फनकार। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर मोहम्मद अनवर हसन की वार्ता, विषय होगा गर्मी में होने वाले चर्म रोग। 6:40 पर रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायिका होंगी अनुपमा कुमारी। 7:20 पर कथा सागर कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रेमचंद पांडे की लिखी कहानी, शीर्षक होगा सोच। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे श्यामानंद झा। 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे नाटक आंसू भरी जिंदगी, लेखक होंगे महेंद्र मयंक एवं प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। 11 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं गुलदस्ता। 12 बजे महिला श्रोताओं का अपना कार्यक्रम होता है नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। दिन के 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में कल गायिका होंगी संगीता कुमारी। 1:30 आप सुनेंगे धारावाहिक पोषण की नींव पर स्वस्थ महल, लेखिका होंगी आरती स्मित एवं प्रस्तुतकर्ता नौमी शांति हेम्ब्रम। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 बजे तरंग कार्यक्रम में फनकार होंगे जगजीत सिंह। 3:20 पर आप सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुनेंगे रंजीत कुमार पाठक को। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा।

रात्रि 9:30 बजे होगा फिल्म संगीत। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित राजन मिश्र एवं साजन मिश्र का गायन।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत के सब श्रोता का विदो के नमस्कार
1: और सभी श्रोता भाइयों को आरु का भी नमस्कार। विदो भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार आरु बहन, की हाल समाचार छे?
1: विदो भाई वो तो आप देख ही रहे होंगे कि गर्मी और उमस जो है वो अपने चरम पर है।
0: हाँ हाँ।
1: ऐसे में गर्मी से बचने के उपायों के अलावा अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बरकरार रखने की जरूरत है, क्या विदो भाई?
0: हाँ हाँ, निश्चित।
1: सही खान पान, सही दिनचर्या के द्वारा सेहत का ख्याल तो रखें ही, साथ ही हमारे श्रोता भाई जब भी बाहर जाएं, एक तो बहुत भरी दोपहरी में बाहर नहीं निकले क्योंकि अभी गर्मी और उमस इतनी ज्यादा है कि कोई भी बीमार पड़ सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। और जब भी घर से बाहर निकले तो पानी पी के निकले, खाना पेट भरा हुआ होना चाहिए खाने से, जिससे कि लू लगने की संभावना जो है वो कम हो जाए। और अगर कभी ऐसे लगे कि अब बाहर में हो और तबीयत खराब लग रही है तो वहीं पर कहीं छाया में चले जाएं और जो प्राथमिक उपचार है वो करने की या करवाने की कोशिश करें। जी
0: अच्छा आरु बहिन, आज जे छिके 20 मई छिके, आरु आज के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनेलो जाय छे। आज आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रेनेता एंटन जांसा के जन्मदिन छिके।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखो आरु बहिन, मधुमक्खी खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता आरु पारिस्थिति तंत्र के वास्ते अत्यंत महत्वपूर्ण छे। परागण आरु पैदावार बढ़ाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छे। दुनिया के खाद्य सुरक्षा के एक तिहाई जे छे मधुमक्खी पर ही निर्भर करे छे।
1: बिल्कुल विदो भाई, और जैसा कि अभी आपने कहा कि आज है जन्म दिवस एंटोन जांसा का, और यह दिन जो है स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता, इनको कहा जाता है एंटोन जांसा को, इनकी जयंती का प्रतीक है। इनका जन्म जो है विदो भाई 20 मई 1734 को हुआ था। उन्होंने मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों की नींव रखी और दुनिया को यह सिखाया कि इन छोटे जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए इनसे कैसे लाभ लिया जा सकता है। और स्लोवेनिया सरकार की पहल और वैश्विक मधुमक्खी पालन संगठनों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मान्यता दी थी।
0: हाँ, जी। मधुमक्खी और अन्य परागणकर्ता के महत्व को उजागर करे में मधुमक्खी के संरक्षण आरु संरक्षण ओकरो सामना मौजूद खतरा के बारे में जागरूकता बढ़ाए के उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज के दिन का विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित कर लो छे।
1: बिल्कुल विदो भाई,
0: एक और बहुत बड़ो विडंबना छे कि जहां वर्तमान कृषि प्रणाली में मधुमक्खी प्राकृतिक परागणकर्ता के रूप में खाद्य उत्पादन आरु फसल के पैदावार बढ़ाए में अमूल्य योगदान दे रहल छे, वहीं पैदावार बढ़ाए के नाम पर अंधाधुन इस्तेमाल होय वाला रासायनिक खाद आरु कीटनाशक मधुमक्खी के अस्तित्व का ही संकट में डाली रहल छे।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है विदो भाई, वैश्विक तापमान में वृद्धि और मौसम के बदलते चक्र के कारण फूलों के खिलने का समय बदल रहा है, और इससे भी मधुमक्खियों को समय पर भोजन यानी कि मकरंद और पराग नहीं मिल पाता है। ये भी उनके जो उनका जो विलुप्त होने की कगार पे है या जो इंडेंजर्ड है, इसकी वजह है।
0: जलवायु परिवर्तन आरो कृषि रसायन के प्रभाव मधुमक्खी के वास्ते दोहरी मार साबित हो रहल छे। पिछला 6 दशक में भारत के खेती में एकल फसल कृषि के चलन बढ़ रहा छे। एकरा से मधुमक्खी के रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी रहलो छे। असल में विविध प्रकार के फूल आरु पौधा के विविधता में कमी के कारण मधुमक्खी के रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी रहलो छे।
1: बिल्कुल विदो
0: भाई। कमजोर पोषण आरु कीटनाशक के घातक संयोजन मधुमक्खी के मृत्यु दर बढ़ाए दिलो छे, जेकरा से परागण के

0: प्रक्रिया आरु कृषि पारिस्थितिक तंत्र का भारी नुकसान पहुंचलो छे। हालांकि अभी भी दुनिया के कई देश में मधुमक्खी के बचाव के उपाय हो रहलो छे।
1: जी, और इनका जो मधुमक्खी की जो इंडेंजर्ड होने के और भी कारण है उसमें है शहरीकरण और आवास का नुकसान।
0: हाँ,
1: जैसे
0: हाँ.
1: जंगलों की कटाई और कंक्रीट के जंगलों को काटा गया है शहरों के विकास के लिए और विस्तार के लिए। इसके कारण मधुमक्खियों के प्राकृतिक आवास एवं उनके अनुकूल पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं।
0: अभी यूरोपीय संघ के साझा कृषि नीति पर्यावरण के अनुकूल कृषि आरु जैव विविधता का बढ़ावा दय में किसान का विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करलो जाय छे। सीएपी के तहत किसान का मधुमक्खी आरु अन्य परागणकर्ता का आकर्षित करे वास्ते पौधा जना कि फैसिलिया, कुट्टू, बकवीट आरु सफेद तिप्तिया घास उगाए के वास्ते प्रोत्साहित करलो जाय छे। एकरा वास्ते किसान का इको स्कीम आरु कृषि पर्यावरण जलवायु उपाय के जरिया सब्सिडी देलो जाय छे। यूरोपीय संघ के अनेक किसान आपनो खेत में मधुमक्खी के बक्सा यानी बी हाइव रखे के वास्ते आमंत्रित करे छे। एकरा से किसान के आपनो पैदावार बढ़ाए में मदद मिले छे आरु मधुमक्खी पालक के प्राकृतिक पराग मिली जाए छे।
1: जी, और भारत में भी विदु भाई, भारत सरकार ने देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए और शहद उत्पादन के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की है। और भारत आज दुनिया के शीर्ष शहद उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से लाखों लोगों को हनी मिशन के तहत रोजगार और टूलकिट भी प्रदान किए जा रहे हैं। मतलब कि विदो भाई, यहाँ भी हमारे भारत में भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं।
0: हाँ, आज मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हम राशनी का मधुमक्खी का बचाए में जैविक खेती करे में या ओकरा प्रोत्साहित करे के प्रयास में संकल्प लेना चाहिए। हमरा सनिक समझे लगते कि मधुमक्खी बसते तभी दुनिया सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, और हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ काम कर सकते हैं मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए। विदु भाई, जैसे अपने बगीचों, छतों या बालकनी में स्थानीय फूलों के पौधे जैसे कि गेंदा, सूरजमुखी, तुलसी, नीम, ये सब लगा सकते हैं। और मधुमक्खियों को गर्मियों में पीने के लिए एक उथले बर्तन में साफ पानी और उसमें कुछ कंकर रखना ताकि वे डूबे नहीं। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से इनका बहुत नुकसान होता है, तो रासायनिक कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक या जैविक खाद का उपयोग करके कहीं ना कहीं मधुमक्खी को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: हाँ, चलो अब कार्यक्रम में आगू बढ़े छे। श्रोता लोग का कुछ संदेश सुनेला के बाद एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनबे में पुरातात्विक अवशेष का संरक्षण वार्ता कार्य के गौतम कुमार
1: जी।
2: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie, new age Baleno, and get amazing benefits, easy finance options, and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
3: Nexa.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुरातत्व और पुरातत्विक अवशेषों का संरक्षण आज अत्यंत प्रासंगिक विषय है। विदेशों में सरकारी तंत्र पुरातत्व और पुरातत्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हो रहा है। भारत सहित विभिन्न देशों के छात्र छात्राओं के बीच पुरातत्व की पढ़ाई काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। पुरातत्व किसी भी क्षेत्र के समग्र इतिहास को जानने तथा समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत के शिक्षाविद सह प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने प्रसिद्ध लेख में लिखे थे कि भारतीय पुरातत्विक स्रोतों के प्रकाश में आने के बाद स्वाभाविक रूप से अतीत के भारत को गौरव हमें गर्व प्रदान करता है। पुरातत्व ये भी बताता है कि विभिन्नता में एकता का स्वरूप है भारतीय संस्कृति। ये एक मूल्यवान साधन है जो वर्तमान भारत के भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करता है। जैसे समय के साथ सभी कुछ परिवर्तनशील है और मनुष्य जैसे मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही इनके द्वारा बनाए गए सारे रचनाएं अजर अमर नहीं हो सकती है। आज जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है ये कल नष्ट भी हो सकता है, पर इसके नष्ट होने के बावजूद इनके अवशेषों में से आने वाले समय में बहुत कुछ मिल सकता है। मिसाल के तौर पे भागलपुर में आज से तकरीबन 50 साल पहले भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कहलगांव के अंतिचक में शुरू किया गया उत्खनन से प्राचीन विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के खंडहरों का अवशेषों को ढूंढ निकाला गया था। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार जो पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच स्थापना किया गया था, जवनों के आक्रमण से ध्वंस होकर जमींदोज हो गया था। बौद्ध धर्मग्रंथ तथा किताबों में इसका वर्णन था, पर इस उत्खनन होने के बाद उक्त प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे उन अवशेषों के आधार पर बहुत सारी नई तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई। विक्रमशिला के अलावा उत्खनन से पहले अन्य खुदाई से दुनिया के सामने प्राचीन सभ्यता जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा प्राचीन बौद्ध विहार जैसे तक्षशिला, सोमपुरा, नालंदा आदि फिर से दुनिया के सामने प्रकट होने का मौका मिला था। खुदाई के पहले इन जगहों के बारे में किताबों या ग्रंथों आदि में से मिला तथ्यों के सहारे इन स्थलों के बारे हम ज्ञान प्राप्त किए। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हमें उन जगहों के बारे कोई नई रोचक जानकारी भी प्राप्त हुआ। इतिहासकार और पुराविदों के गहन अध्ययन से उक्त पुरातत्विक अवशेषों से इसके जीवनकाल का सटीक वर्णन मिलना शुरू हुआ। हम उक्त अवशेषों के सहारे उस समय के उक्त चीज़ों की सही मूल्यांकन कर उसका अतीत को सही रूप से अवलोकन कर पाए। अब यक्ष प्रश्न है कि इन पुरातत्विक अवशेषों का संरक्षण का जरूरत क्या है। खुदाई से निकाला गया जैसे पुरातत्विक अवशेषों पुराविदों तथा इतिहासकारों के अध्ययन का एक गुरुत्वपूर्ण सामग्री होता है। जैसे कि पहले कहा गया है, किसी भी इतिहास के समय काल तथा उसका वर्णन किताबों से मिलता है, पर अगर उस इतिहास का यदि कुछ पुरातत्विक अवशेष मौजूद है तब ये प्रत्यक्ष साबूत के तौर पर माना जाएगा। इन अवशेषों में से सीधे रूप से इन्हें अतीत के बारे बोलने की क्षमता भी होती है। विक्रमशिला के ऊपर रिसर्च कर रहे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विशेषज्ञों का टीम जो संप्रति विक्रमशिला के अवशेषों को अवलोकन करने हेतु भागलपुर आया था, कुछ ऐसे नए तत्वों के बारे पता लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया के सामने कुछ नई बात की खुलासा होने की अनुमान है। उक्त टीम में एक वरीय पुराविद जो बांग्लादेश की थे के अनुसार हर रोज हो रहे विज्ञान के नई खोज की तरह पुरातत्विक विषयों की भी नई अनुसंधान हो रहा है। इनके चलते हम पहले की तुलना में ज़्यादा कारगर रूप से इन अवशेषों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। बहरहाल भागलपुर सहित पूरे पुराने अंग प्रदेश के इलाके जिसमें झारखंड के संथाल परगना के जिले भी शामिल था ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे एरिए इलाके में बहुत सारे प्राचीन अवशेष प्राप्त हो चुका है और तथा आए दिन जमीन के अंदर ऐसे अवशेषों का मिलना यहाँ आम बात है। पुरविदों के अनुसार अंग के गोद में आज भी ऐसा बहुत सारे अवशेष छिपे हुए हैं जिसका उत्खनन अभी होना बाकी है।
निर्देशक पुरातत्व विभाग बिहार सरकार की एक टीम जो इन दिनों यहाँ से यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों और सभ्यता की खोज में जुटी है, आशंका व्यक्त किया है कि यहाँ के जमीन के नीचे कुछ अभी भी दबी हुई है जो कि पूरे दुनिया के सामने कुछ नया चौंकाने वाले तथ्य पेश कर सकता है। ज्ञात हो कि विक्रमशिला की उत्खनन अभी भी अधूरा रह गया है। पुराविद तथा इतिहासकारों के अनुसार विक्रमशिला बौद्ध महाविहार का एक बड़ा हिस्सा आज भी जमींदोज है। इसका नए सिरे से उत्खनन होने से विक्रमशिला से जुड़ी हुई बहुत सारी नई बात दुनिया के सामने आ सकती है। इस प्रकार पुराने अंग प्रदेश के बहुत से स्थान जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा विशेष प्रयास चलाना चाहिए। इतिहासकारों को मानो तो अगर नई सिरे से खोज हो तो इस अंग क्षेत्र के गोद में छिपा हुआ अतीत का बहुत बड़ा खजाना निकल सकता है। ये हमारे लिए विड़म्बना है कि हम अपने इस विरासत को ना तो संवर सके और ना ही पुरातत्विक अवशेषों को उचित रूप से देख रेख करते हैं। यहाँ आए अंतर्राष्ट्रीय पुराविदों की टीम संप्रति विक्रमशिला भ्रमण के दरमियान वहाँ हो रहे संरक्षणों को कार्य को देख कर चकित हो गया। उन विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के पुरातत्विक अवशेषों को संरक्षण में मापदंडों का पालन सही रूप से होना चाहिए। मूल बात यह है कि इन अवशेषों को बिना किसी क्षति पहुंचाए इनकी मरम्मत हो सकता है, पर इन पुरातत्विक संरक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखना चाहिए कि अतीत के किसी भी आकृति का मूल भाव नष्ट ना हो तथा इसमें कोई बाहरी परिवर्तन ना जोड़ा जाए। हमारे लिए ज़्यादा दुर्भाग्य यह है कि पूरे अंग प्रदेश क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करों की गिरह सक्रिय है, जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करता है। कोई 2 साल पहले जमुई के लछिवार से भगवान महावीर का दुर्लभ मूर्ति चोरी हो गया, पर लाख शुक्र है कि पुलिस की सही तफ्तीश के चलते मूर्ति मिल गया था। संप्रति भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति जोलपुरा मंदिर में स्थापित था रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऐसे दुर्लभ मूर्तियों की चोरी की घटना अनगिनत है इस इलाके के लिए, जिसका सही हिसाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा इस इलाके में दुर्लभ प्राचीन कलाकृतियां जिसे पहाड़ आदि पर अति प्राचीन काल में उकारा गया था, देखरेख के अभाव

0: में नष्ट होने के कगार पर है, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये हमारी विरासत, खासकर आने वाले नई पीढ़ी के लिए इन अवशेषों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। विदेशों में जैसा कि चीन आदि जगह पर पुरातात्विक अवशेषों पर वहां के सरकार विशेष ध्यान देना शुरू किया है, जर्मनी आदि जगह में सरकार द्वारा इन अवशेषों के लिए विशेष संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इससे दो सुविधा मिल रही है, एक वैसे धरोहरों को उचित संरक्षण मिल रहा है, साथ ही साथ पर्यटकों की भीड़ वैसा संग्रहालय में उमड़ने से सरकार को काफ़ी राजस्व का लाभ भी मिल रहा है। वहां के नागरिकों को में भी गजब का उमंग और उत्साह रहता है इन सारे चीज़ों को देखने के लिए। वे एक छोटे से छोटे पुरातात्विक अवशेष को देखने के लिए इन संग्रहालयों में लंबी लाइन में खड़े होने के साथ साथ प्रवेश शुल्क की मोटी रकम चुकाने में हिचकते नहीं है। और हम अपने दुर्लभ पुरातात्विक अवशेषों को, जो दुनिया के सबसे पुराना है, का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने के कारण उसे नष्ट करने या नष्ट होते देख चुपचाप रह जाते हैं। हमारे देश में वैसा पुरातात्विक अवशेषों जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, कुछ हद तक ठीक है। बिहार में नालंदा जैसे पुरातात्विक अवशेषों इसका उदाहरण है, जहां काफ़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ भी लगी रहती है। पर ठीक इसका विपरीत विक्रमशिला जैसे धरोहरों का समुचित देखरेख न होने से वहाँ के प्राचीन खंडहरों का विनष्ट होने के कगार पर है। वैसा ना हो कि कल हमारे पास इन अतीत के धरोहरों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं रह जाए। हमारी इन धरोहरों को बचाने के लिए हमें आम जनों को जागरूक करना होगा। चूँकि इलाके से आए दिन कुछ न कुछ ऐसे प्राचीन अवशेष मिलता रहता है, अतः इसके संरक्षण के लिए लोगों को सहभागिता की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसे चीज़ों का संरक्षण की जिम्मेदारी का एहसास भी करवाना होगा। इसके साथ साथ संबंधित सरकारी विभागों को भी ऐसे अवशेषों के प्रति सचेत रहने का जरूरत है।
1: हाँ, अभी बहुत सुंदर वार्ता सुन लिए एकरा वास्ते जे छे गौतम कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरु आव कुछ झूमर वगैरह भी होना चाहिए, माहौल जे छे जब संगीतमय होइ छे तो ओकरो मजा ही कुछ और होइ छे। तो चलो एकटा झूमर सुनने छे बाबा के भवन में, आरु ई छे के कलाकार छे के सुलेखा रमैया
2: जी।

0: आ ई झूमर मत न सबके मन के एकदम झुमाए दिलकों बाबा के भवन में। आ होते छे कि जब कोई भी देखो गीत संगीत धार्मिक प्रवृत्ति के हुई छे तो वैसे माहौल पूरा भक्तिमय हो जाए छे और ओकरो कुछ मजा ही और हुई छे।
1: इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं विदो भाई और सुनते हैं कुछ संदेशों को।
2: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
3: Nexa.

0: AIR at 90.
1: एक बार फिर से सभी श्रोता भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत है। विदु भाई, क्यों ने अपना श्रोता भाइयों को कुछ मौसम की सूचना दे दी जाए?
2: तबन खेती बाड़ी करे में सुविधा होते
1: जी, बिल्कुल।
2: तो चलो मौसम संबंधी सूचना सुनाओ।
1: मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में 20 से 24 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रोहतास, कैमूर जिलों में कल लू हीटवेव चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% तथा दोपहर में 20-25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। कुछ समसामायिक सुझाव भी है विदु भाई। सामान्य सलाह यह है कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। रोहतास, कैमूर जिलों में कल लू यानी कि हीटवेव की स्थिति से फसलों की नमी की कमी, पत्तियों का झुलसना, फूल या फल का गिरना तथा पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो सकता है।
2: हाँ, चलो अब कुछ मौसम संबंधी सूचना सुनला के बाद जे छे श्रोता लोग का कुछ संदेश सुनवाई छे, ओकरो बाद सुनबे एक प्रायोजित कार्यक्रम।
1: और थोड़ा सा और मौसम सूचना है वो दे देते हैं। दुग्ध उत्पादन कम हो सकता है और सुबह शाम हल्की सिंचाई करें, मल्चिंग अपनाएं, दिन में उर्वरक कीटनाशी का छिड़काव ना करें तथा पशुओं को छायादार स्थान में पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। और सब्जियों के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि ग्रीष्मकालीन सब्जी की निकाई गुड़ाई एवं फसल सुरक्षा पर ध्यान रखें। बरसाती सब्जी लगा देना चाहिए। बीजस्थली में बरसाती प्याज N53 बीज की बुआई कर दें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों पर फफूंद नाशक दवा का छिड़काव करें। फल मक्खी लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा फसल को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मैलाथियन, 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव वर्षा ना होने की स्थिति में करें।
2: चलो अब एक प्रायोजित कार्यक्रम सुने छे पारा मेडिकल है पारस
1: जी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से 7 दिनों के बाद आज बुधवार का दिन है और हम कार्यक्रम में पैरा मेडिकल है पारस लेकर आप सबों के घर आंगन में आ चुके हैं बातें करने की। पैरा मेडिकल का कोर्स, ANM, GNM का कोर्स, ये सारा कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरामेडिकल है पारस ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हां चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो और भी संभावनाएं हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ से संस्थान एफिलिएटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी, किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों के लिए क्या करना होगा, सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठठा ठठ ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए, आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो है श्रीराज, नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर, दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में। पहले फिर सवाल।
5: सर, मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर है।
4: आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी?
5: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से, और MSc नर्सिंग मेरा KS कॉलेज ऑफ नर्सिंग MPMSU से क्लियर किया हूँ।
4: बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
5: बिहार आके काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
4: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
5: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
4: अच्छा अब चलते लौटते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ। BSc नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
5: BSc नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी, सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ESIC हॉस्पिटल होता है, आजकल CHO 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा CHO भी पोस्टेड होता है, एक PSC होता है गाँव में सर जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर CHO को पोस्टेड किया जाता है।
4: आपने बड़ा बड़े अच्छे

0: से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करके, और चार साल का कोर्स है आपने बताया, और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल हिपारस, और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं, और अभी बातचीत चल रही है बीएससी नर्सिंग, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, और उनका नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको बता दें कि ये पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है, जहाँ क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियाँ होती हैं। अपना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहाँ प्रैक्टिकल कराई जाती है। प्रैक्टिकल से ही एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है?
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है, जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्री राज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है, पीटीएस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है, बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है, सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे,
1: जी जी सर,
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी होता है,
0: फ्रेंडली। तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कंप्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीज़ों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं, और जो गैप मेंटेन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच में वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं,
0: यानी एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है बावजूद।
1: बिल्कुल
0: सर, है ना,
1: बिल्कुल
0: फ्रेंडली माहौल है।
1: बिल्कुल।
0: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ, आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो बच्चे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, बच्चे और गार्जियन का भी उसमें सपोर्ट होता है सर, और बच्चों को भी स्टडी करना होगा, ये 4 ईयर ही होता है बच्चे की एक एज के अकॉर्डिंग, जो स्टडी जो उसका फ्यूचर बना सकती है।
0: जी बिल्कुल।
1: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का, उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा सर।
0: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और दे दें आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो श्री राज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है। वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9162413233 और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
1: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को
0: जी।
1: तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं
1: जी,
0: उस पे लिबर्टी मिलनी चाहिए,
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
0: अच्छा एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं।
1: जी सर।
0: बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं, मसलन बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता
1: जी।
0: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश की अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास तो आप किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं, और इस वक्त रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बताइए उन लोगों को।
1: मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा सर, जैसे चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन का मेन रोल है सर, उस चीज़ में टेक्निकल एजुकेशन का, वहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर बनाएं।
0: आगे बढ़ें और फ्यूचर बनाएं। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
1: जी सर बहुत अच्छा लग रहा
0: है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
1: थैंक यू सर।
0: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे देखिए इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना हाँ योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्रीराज हाँ ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम जीएनएम ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233, 9162413233 या 9155558888 ये नंबर है, इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी। और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, मैंने कहा अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: हाँ, प्रायोजित कार्यक्रम खत्म हो गए आरु जे छे आवा खेतीबाड़ी वास्ते आरु तो बहुत चर्चा होल है, लेकिन घर में भी जे कीटनाशक होई छे वो बहुत घातक होई छे, तो घरेलू कीटनाशक के केना तैयार करना चाहिए एकरा संबंध में अच्छा जानकारी ले छे एक पूर्व प्रसारित माध्यम वार्ता के माध्यम से डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा
2: जी।

चुकी है। पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहरीले व महंगे रासायनिक कीटनाशकों व रोग नियंत्रकों के कारण किसान कर्जे के बोझ में दबकर आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। इस दुष्चक्र से किसानों को बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि हम जैविक कीटनाशक को रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग करें। यह हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपने हाथों से तैयार होते हैं। इनसे किसानों की बाजार पर निर्भरता भी खत्म होती है। विभिन्न रोगों और कीटों के नियंत्रण हेतु उपयोगी घरेलू जैविक कीटनाशी बनाने के सरल तरीके हैं। जैसे पहला है पंचगव्य। प्राचीन काल से ही भारत जैविक आधारित कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी के मिश्रण से बनाए जाने वाले पदार्थ को पंचगव्य कहते हैं। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गौमूत्र 1.5 लीटर, गोबर 2.5 किलोग्राम, दही 1 किलोग्राम, दूध 1 लीटर, देसी घी 250 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम, सिरका 1 लीटर, केला 6, कच्चा नारियल 2, पानी 10 लीटर और प्लास्टिक का या मटका। पंचगव्य बनाने की विधि है, प्रथम दिन 2.5 किलो गोबर व 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल देते हैं। ढक्कन अच्छी तरह से बंद करने के बाद अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाते रहते हैं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में मिलाकर मटके में डाल दें, फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इसे लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो समझ लेना चाहिए कि हिलाने की प्रक्रिया और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में व वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने में मात्र 70 रुपये प्रति लीटर की लागत आती है। इसके अलावे दूसरा जैव कीटनाशी है नीमास्त्रम। इसके बनाने के लिए हमें 200 लीटर पानी, 10 से 20 लीटर देसी गाय से प्राप्त गौमूत्र, 2 किलो देसी गाय से प्राप्त गोबर, 10 किलो छोटी डलिया नीम की, अब इन सभी मिश्रण को मिलाकर बोरी से ढककर 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दिन में 2-3 मिनट तक इसे घोलते हैं। 48 घंटे बाद इसको अच्छी तरह से छानकर स्टोर कर लेते हैं। इसे 6 माह तक प्रयोग कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा जैव कीटनाशी है जो सभी प्रकार के कीटों में प्रभावी सिद्ध हुआ है। 200 लीटर नीमास्त्र 1 एकड़ में छिड़काव करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा तीसरा जैव कीटनाशी है ब्रह्मास्त्र। इसे बनाने के लिए 20 लीटर गौमूत्र, 5 किलोग्राम नीम के पत्ते की चटनी, 0.5 किलोग्राम तंबाकू का पाउडर, 0.5 किलोग्राम हरी तीखी मिर्च, 500 ग्राम देसी लहसुन की चटनी। तो बताई गई सभी सामग्री को एक मिट्टी के बर्तन में डालें और आग से 4 बार उबाल आने तक इसे गर्म करते रहें। फिर 48 घंटे तक इसे छाए में रखकर ठंडा होने देते हैं। पुनः इसे 48 घंटे में 4 बार डंडे से हिलाते रहते हैं। अग्नि अस्त्र का प्रयोग केवल 3 माह तक ही प्रयोग आ सकता है। इसके लिए मिट्टी के बर्तन में ही सामग्री को उबाल आने दें, अन्यथा अन्य पात्र में इससे विषाक्तता बढ़ जाती है। 5 लीटर अग्नि अस्त्र को छानकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे मशीन या नीम के लेवचा से इसका छिड़काव करते हैं। इस दवा से स्टेम बोरर, लीफ रोलर, फ्रूट बोरर, पोड बोरर आदि कीट बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों बहुत से वनस्पतियों का जैविक कीटनाशी के रूप में सीधे ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियां, 1 एकड़ जमीन में छिड़काव के लिए 10 से 12 किलो

0: पत्तियों का प्रयोग करें। इसका प्रयोग कवक जनित रोगों, सुंडी, माहू इत्यादि हेतु अत्यंत लाभकारी होता है। 10 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलो पत्तियों को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह पत्तियों को अच्छी तरह कूट कर या पीस कर पानी में पतले कपड़े से छान कर मिला लेते हैं। शाम को छिड़काव से पहले इस रस में 10 ग्राम देसी साबुन अवश्य मिला लें, क्योंकि देसी साबुन मिलाने से ये पौधों पर आसानी से फैलता है। दूसरी है नीम की गिरी। नीम की गिरी का 20 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 किलो नीम के बीजों के छिलके उतार कर गिरी को अच्छी प्रकार से कूट लें। ध्यान रहे कि कूटने में इसका तेल ना निकले। कूटी हुई गिरी को एक पतले कपड़े में बांधकर 20 लीटर पानी में भिंगो कर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन इस पोटली को मसल मसल कर निचोड़ लेते हैं व इसके पानी को छान लेते हैं। इस पानी में 20 ग्राम देसी साबुन या 50 ग्राम रीठे का घोल मिला देते हैं। यह घोल बिल्कुल दूध के समान दिखने लगता है। इस घोल को कीट व फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीम का तेल। नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल कर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिला लेते हैं। 1 एकड़ की फसल में 1 से 3 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इस घोल का प्रयोग बनाने के तुरंत बाद करें, वरना तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है, जिससे यह घोल प्रभावी नहीं रह पाता है। नीम के तेल की छिड़काव से गन्ने की फसल में तना भेदक व शीर्ष भेदक कीटों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नीम के तेल कवक जनित रोगों में भी उतना ही प्रभावी है। नीम की खली। नीम की खली फफूंद जनित व मिट्टी जनित रोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। 1 एकड़ खेत में 40 किलो नीम की खली को पानी व गौमूत्र में मिलाकर खेत की जुताई करने से पहले पूरे खेत में बखेर कर मिला देते हैं, ताकि यह अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। इससे मृदा जनित सभी प्रकार के रोगों की रोकथाम करने में मदद मिलती है। खासकर यह दलहनी फसलों के लिए वरदान सिद्ध होता है। नीम की खली का घोल। 1 एकड़ की खड़ी फसल में 50 लीटर नीम की खली का घोल का छिड़काव करें। 150 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलोग्राम नीम की खली को 50 लीटर पानी में एक पतले कपड़े की पोटली बनाकर रात भर के लिए भिंगो देते हैं। अगले दिन इसे मसल कर व छान लेते हैं। यह बहुत ही प्रभावकारी कीट व रोग नियंत्रक का कार्य करता है। गौमूत्र। गौमूत्र कीटनाशक के साथ साथ पोटाश व नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत भी है। इसका ज़्यादातर प्रयोग फल, सब्जी तथा बेल वाली फसलों को कीड़ों व बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। गौमूत्र को 5 से 10 गुना पानी में साथ मिलाकर छिड़कने से माहू, सैनिक कीट व शत्रु कीट मर जाते हैं। लहसुन। लहसुन एक बहुत ही अच्छा कीटनाशी माना जाता है। यह मिर्च, प्याज आदि की पौध में लगने वाले सभी प्रकार की कीड़ों के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 1 किलो लहसुन तथा 100 ग्राम देसी साबुन को कूटकर 5 लीटर पानी में बढ़िया से मिला लेते हैं, फिर पानी को छानकर इसका पौधों पर छिड़काव करते हैं। सरसों की खली। यही बहुत ही प्रभावकारी फफूंद नियंत्रक है। 1 एकड़ भूमि के लिए 40 किलो सरसों की खली को बुआई से पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिससे सभी प्रकार के फफूंदियों का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: हाँ, तो अब आज के कार्यक्रम से यहीं विदा लै छे। अगला दिन फिर मिलबे। सबका विदु के नमस्कार
2: और सभी को आरू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने

0: प्रोफेसर निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जबकि प्लांट वर्षों से बंद पड़ा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और जनता के पैसे का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया के बिगड़ते भू राजनीतिक हालात को लेकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। रांची दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन समेत सभी क्षेत्र संभावित प्रभावों का आकलन कर अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रहे हैं।
1: जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है, तो उस सिचुएशन को हमें अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें, हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सके। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है तो अच्छा लगा हमें।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सोशल

0: मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि गलत सूचनाओं पर तेजी से अंकुश लगाया जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रग्स के आह्वान पर आज राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंप कर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जमशेदपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उलीडी ओपी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।
1: एक व्यक्ति जो संदिग्ध नजर आ रहा था, जो लक्ष्मण नगर छठगांव है उसके पास बैठा था, तो उसको जब गश्ती दल ने उसे पूछताछ की यहाँ क्यों बैठे हो, तो उसके पास में एक चमकती हुई चीज नजर आई, जिसको देखने पर पता लगा कि वो एक देसी पिस्टल है और पूछताछ पर पता चला कि उसका इस्तेमाल इस पंजारी या फिर धमकी देने में किया जाना था।
0: जामताड़ा के दुलाडी स्थित नगर भवन में आज जिला स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने सरकारी स्तर पर उपलब्ध खरीफ फसलों के बीज, उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग और असिंचित भूमि पर बेहतर कृषि कार्य कर बेहतर उत्पादन प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी।
2: ये कर्मशाला का आज का मुख्य उद्देश्य इस बार का है कि हमारा सुखाड़ का आसार है, हर एक साइकिल में एक बार सूखा आता है, जैसे इस बार अल्लीनो आने का इफेक्ट है, वो अगर 2 वीक लेट मानसून होता है तो क्या करे, 4 वीक लेट मानसून होता है क्या करे, अगस्त के बाद क्या करे, 15 सितंबर के बाद वो अर्ली रबी का कैसे तैयारी करे ताकि उनको कम से कम क्षति और नुकसान हो, और दूसरा है कि उनको तकनीकी जानकारी जो भी कृषि विभाग की है।
0: आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में मध्यम दर्जे की मेघगर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के गठन के लिए जिला तैराकी संघ द्वारा 23 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीर बुद्धू भगत एक्वेटिक स्टेडियम होटवार के तरणताल में चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यह चयन 1 जून 2026 को JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में होने वाली 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 को देखते हुए किया जा रहा है, जिसमें रांची की बालक बालिका, पुरुष एवं महिला टीमें भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा AI और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा अहम। गांडई विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान कहा कि सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की रखते हैं बड़ी क्षमता। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को लिखा।

पत्र की सीबीआई जांच की मांग। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने पीएमएलए की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण। अदालत ने दी सशर्त जमानत। और 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 के मद्देनजर रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के लिए ट्रायल 23 मई को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं, क्षमा करेंगे 7:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम श्रमिक जगत। स्वर सहयोग पीयूष आनंद का है एवं प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक जगत में।
1: आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पीयूष आनंद।
0: श्रोताओं आप जानते हैं कि श्रमिक भाइयों को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम हर बार श्रमिकों के जन कल्याण, उनके अधिकारों की बात करते हैं और अनुभवी श्रमिकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनसे आप प्रेरणा लेकर स्वरोजगार कर सकें और श्रम कर मेहनत कर अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकें। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जी हां श्रोताओं, हम जानते हैं कि श्रम का कितना ज्यादा महत्व है और इसीलिए हमारे देश में हमेशा से श्रमिकों का महत्व रहा है और इसीलिए तो हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लाते हैं।
1: श्रोताओं, 10वीं कक्षा के बाद कौशल आधारित रोजगार चाहने वाले छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI की शिक्षा सबसे भरोसेमंद करियर विकल्पों में से एक मानी जाती है। जब आप श्रम कर मेहनत कर स्वरोजगार करना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, तो आज के प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में उद्योग और सरकारी संगठन व्यावहारिक तकनीकी कौशल को पहले से कहीं अधिक महत्व देते हैं। ITI पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तीव्र औद्योगिकरण, अवसंरचना विकास और तकनीकी प्रगति के साथ पूरे भारत में कुशल तकनीशियंस की मांग बढ़ गई है। नियोक्ता ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो व्यापक प्रशिक्षण के बिना तुरंत काम शुरू कर सकें। इसीलिए ITI की शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा, कार्यशाला प्रशिक्षण और उद्योग के अनुभव पर केंद्रित है, जिससे लोग रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। श्रोताओं, भारतीय रेलवे हो, रक्षा सेवाएं, विद्युत वितरण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम जैसे संगठन नियमित रूप से ITIs के लिए पद प्रदान करते हैं। ये सरकारी नौकरियां नौकरी की सुरक्षा, स्थिर आय, भत्ते और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो ITI से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों यानी कोर्सों को पूरा कर आप स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में भी ITI स्नातकों के लिए विनिर्माण इकाइयों, ऑटोमोबाइल कंपनियों, निर्माण कंपनियों, विद्युत सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और रखरखाव सेवाएं नियमित रूप से ITI प्रशिक्षित पेशेवरों को नियुक्त करती है। इन पदों पर आकर्षक वेतन, प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि और उन्नत तकनीकों के साथ काम करने के अवसर मिलते हैं। श्रोताओं, ITI की शिक्षा स्वरोजगार और उद्यमिता के द्वार खुलती है। कई ITI स्नातक अपनी कार्यशालाएं, सेवा केंद्र, विद्युत ठेकेदारी व्यवसाय और निर्माण इकाइयां स्थापित करते हैं। तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बल पर ITI से प्रशिक्षित पेशेवर स्वतंत्र व्यवसायी भी बन सकते हैं। तो श्रोताओं, किस तरह ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह वहां आप विभिन्न प्रकार के कोर्स कर सकते हैं और निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में रोजगार कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, इस पर हमने जानना चाहा आज विस्तार से। हमने बातें की निजी क्षेत्र के ITI NEC ITI के प्रशिक्षक से। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत। श्रोताओं, श्रमिक जगत कार्यक्रम में हम हर बार नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह लोग स्वरोजगार कर आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में नए मुकाम हासिल कर सकते हैं श्रम कर। और आज के युवाओं के बीच ऐसा ही एक क्षेत्र है जो काफ़ी पॉपुलर है, जो कोर्स वो है ITI का कोर्स यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 वर्षीय, 1 वर्षीय और अलग अलग तरह का कोर्स। तो किस तरह ITI कर स्वरोजगार के क्षेत्र में, सरकारी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह इसमें मुकाम पाया जा सकता है और जीवन में करियर में आगे बढ़कर सफलता हासिल की जा सकती है, इसको हमने जानने का प्रयास किया। हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर ITI के इंस्ट्रक्टर पंकज सर। आइए उनसे जानते हैं विस्तार से। हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ITI में किन किन तरह के कोर्स मौजूद हैं और वो कितनी अवधि के हैं, और इसके अलावा जो भी ITIs होते हैं वो कहाँ से मान्यता प्राप्त होते हैं, यदि छात्र कहीं एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या जानकारी रखनी चाहिए कि वो संस्थान कहाँ से मान्यता प्राप्त है।
2: जी, संस्थान तो पहले NCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, दिल्ली से, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इससे मान्यता प्राप्त करने के बाद कोई भी संस्था ITI का प्रशिक्षण दे सकती है और शिक्षा को पाने के बाद वो डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 3-4 ट्रेड की जो है एंट्री होती है बच्चों की। एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है जो काफ़ी एवरग्रीन है, बच्चे इसमें स्वरोजगार की काफ़ी संभावना है। इसके अलावा रेलवे में या इसरो में, DRDO में, जहाँ पर भी वायरिंग की ज़रूरत होती है उन सारे जगहों पे बच्चे काम कर सकते हैं। ये ट्रेड काफ़ी पॉपुलर है और बच्चे ज़्यादा यही चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है कि बच्चे अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो वो अपने गांव में भी एक छोटा सा अपना सेंटर खोल करके वहां से भी अपना काम कर सकते हैं। ऐसा ये क्षेत्र है ना जिसमें रोज बच्चे जो है 500-1000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं, किसी छोटे से गाँव में भी इवन कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फीटर ट्रेड है, फीटर में जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें उसमें हम सिखाते हैं कि कैसे हमारा मोटर्स की असेंबलिंग होती है, सारे पार्ट्स की असेंबलिंग होती है, कैसे एक चीज़ को दूसरे चीज़ में फिट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो फिटर ट्रेड में जो है काफ़ी सारा गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारा हमारे यहाँ आता है, रेलवे वगैरह में, इसरो में, DRDO में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है वो फिटर ट्रेड के बच्चों को खोजती है ताकि वो स्किल्ड हो, क्योंकि उसमें एक मिलीमीटर की भी डिफरेंस जो होती है ना वो मशीन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए ट्रेंड फिटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो बेहतर तरीके से उनके पार्ट्स को फिट कर पाएँ जिसमें एरर होने की संभावना बहुत कम हो, क्योंकि एरर्स आएगी तो मशीन का वेयर एंड टीयर बढ़ेगा जो हमारे स्किल्ड लेबर उस चीज़ को कम करते हैं। इसके अलावा मैकेनिक डीजल है जिसमें हमारा मैकेनिक लोग काम करते हैं, मैकेनिक डीजल एक साल का कोर्स होता है, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का कोर्स होता है, फिटर भी 2 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा भी अन्य तरह की बहुत सारे कोर्स होती है, कोपा होते हैं जिसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली कोपा लड़कियों लोग ज़्यादा प्रीफर करती है क्योंकि ये आराम से बैठ करके कंप्यूटर पे ट्रेनिंग लेके और ऑफिशियल वर्क कर सकती है। इसके अलावा भी है, प्लम्बिंग है, कारपेंट्री है, ये सब भी है, लेकिन हमारे यहाँ ये 4-5 तरह के कोर्स, कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ये सब एवरग्रीन फील्ड है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी, स्वरोजगार के लिए भी ये काफ़ी बेहतर।
1: ITI करने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए जिसके बाद ITI में एडमिशन मिल सकता है और उसके बाद ये प्रशिक्षण वो हासिल कर सकते हैं छात्र?
2: मिनिमम ITI में एडमिशन लेने के लिए +2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मैट्रिक के बाद भी बच्चे आ करके ITI कर सकते हैं। उसमें उनको ITI की डिग्री के साथ साथ +2 की भी डिग्री हो जाती है, और अगर वो इंटर के बाद आते हैं तो वो कोर्स करते हैं और उनको ITI की डिग्री मिलती है। कम से कम बच्चे को प्लेन ITI करने के लिए इंटर होना चाहिए, और वो इंटर और ITI दोनों चाहते हैं तो मैट्रिक के बाद भी आकर जुड़ सकते हैं, उनको जो है PCM से डिग्री जो है वो मिल जाएगी इंटरमीडिएट।
1: ITI करने के बाद क्या तकनीकी शिक्षा में भी और आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे डिप्लोमा करने में भी इसमें कोई सुविधा मिलेगी?
2: हाँ, ITI करने के बाद उनको काफ़ी जो है मदद मिलेगी। लेटरल इंट्री का प्रोविज़न होता है, पॉलिटेक्निक वगैरह, BTech वगैरह में आप जाएंगे तो उसमें आपको लेटरल इंट्री मिलेगी, उसमें 1 साल का आपका बचत हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं वो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द मतलब क्लासेस होती है वो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को हम काम करना सिखाते हैं। तो जब आप किसी और हायर लेवल कोर्स में जाते हैं और आपके पास पहले से ये जानकारी है, एक तो आपको समय भी बचता है और दूसरा क्या है कि आप स्किल्ड हैं, तरीके से जानते हैं, तो आपकी पढ़ाई में भी काफ़ी मदद।
1: सर, बड़ी संख्या में आज भी युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे ही वक्त देते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी सभी के लिए संभव नहीं है, बड़ी आबादी हमारे देश में है। तो ऐसे लोग जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ITI का कोर्स कैसे लाभदायक हो सकता है?
2: देखिए, ITI जो बच्चे करते हैं वो उनके पास तो एक रास्ता खुला हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है ये तो संभव नहीं है सरकार के लिए कि सभी ट्रेंड लोगों को नौकरी दे पाए। तो दूसरा विकल्प होता है हमारा प्राइवेट जॉब। सभी को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है जो काम करेंगे। आज चाइना हमारे देश से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, कारण उनके यहाँ है कि उनके यहाँ स्किल्ड लोग, इसीलिए अलग अलग कंट्री के बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ फैक्ट्री डाल रही थी, लेकिन कोविड के बाद क्योंकि चाइना का रेपुटेशन थोड़ा ख़राब हो चुका है तो हमारे भारत का रेपुटेशन अभी काफ़ी अच्छा है हर एक मामले में, सिक्योरिटी के मामले में। तो बहुत सारी कंपनियां अमेरिकन बेस्ड, स्विट्जरलैंड की बेस्ड और सारी बहुत सारी देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ खुल रही है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड, आगे ये बढ़ता चला जाता है, जितने बेहतर काम करेंगे उनका बेहतर ये होता है। तीसरा, अगर ये प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं तो स्वरोजगार में अपने गांव में, अपने कस्बे में, अगर वो कोपा किए हुए हैं तो कंप्यूटर का सेंटर्स जिसमें आप CSP ले सकते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट लेकर के चला सकते हैं, बच्चों के ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, तो ये सारे ये जो हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो स्वरोजगार की भी कमी नहीं है इलेक्ट्रीशियन में। इसके अलावा फिटर है, फिटर में हमारे बहुत सारे ऐसे लोकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सामान असेंबलिंग करके बेच, जैसे हमारा हो गया कंप्यूटर्स हो गया, या इसके अलावा मोटर्स वगैरह है, तो इन सारे जगह पे वो मोटर असेंबलिंग कर करके मार्केट में बेच सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम में, क्योंकि उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसमें वो अपनी एक नई इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के जितने भी ट्रेड हैं सब में कुछ न कुछ सारे तरह का स्कोप है, स्वरोजगार का भी स्कोप है, इसके अलावा प्राइवेट जॉब का भी है, गवर्नमेंट जॉब का भी है, तो वो जिस तरह का काम करना चाहें आसानी से कर सकते हैं।
1: ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सरकारी क्षेत्र द्वारा भी चलाया जाता है, संस्थान, और निजी क्षेत्र द्वारा भी। तो क्या सरकार के द्वारा जो लोग निजी क्षेत्र में ये कोर्स कर रहे हैं उनको कोई मदद भी दी जाती है, कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलता है?
2: देखिए, बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं प्राइवेट ITI में करने के लिए, तो उनके लिए सरकार ने, बिहार सरकार ने एक सुविधा दी हुई है की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसमें 2 लाख रुपए तक लोन उनको मिलता है पढ़ाई के लिए, तो जिसमें वो अपनी फीस भर सकते हैं। इसके अलावा उनको रहने खाने की सारा जोड़ करके मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक उनको क्रेडिट कार्ड से मिलता है। जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है लेकिन ITI करना है, तो वो एडमिशन लेने के बाद वो बोनाफाइड लेटर लेकर के उनके पोर्टल में, बिहार सरकार के पोर्टल में, वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके खाता पे जो है सरकार पैसा भेज देती है, ताकि और वो भी काफ़ी कम ब्याज दर पर, 1%, वो भी 2-3 साल के बाद वो ब्याज लगना शुरू होता है कि जब वो कमाना शुरू करेंगे उसके बाद से उनको ब्याज दर देना है। तो काफ़ी कम ब्याज दरों पर उनको जो है लोन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से, और आसानी से अपने कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं और समय के साथ उस लोन को भी आराम से चुका सकते हैं।
1: बिना स्किल को डेवलप किए, कौशल विकास किए हुए आज समय में तरक्की नहीं पाई जा सकती। तो वैसे सभी युवा जो 10वीं पास है, 12वीं पास है या आगे की उच्च शिक्षा भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, ITI से जुड़कर कौशल विकास कर आगे करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी को अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल पढ़ाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक ऐसा ट्रेड लेके जरूर चले तकनीकी शिक्षा की ओर, क्योंकि आने वाला समय हमारा फ्यूचर पूरी तरह से तकनीक पे बेस होगा। तो एक ट्रेड आप जरूर तकनीकी शिक्षा को लेके चले, ताकि आपको रोजगार या भविष्य में जो आपका ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो काफ़ी अच्छी होगी, और आप बेरोजगार तो कतई नहीं रहेंगे, हमेशा आपके पास कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन यापन को आसानी से चला सकते हैं। तो तकनीकी शिक्षा के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये आने वाली भविष्य है और इसी भविष्य पर हमारा पूरा देश और हमारे युवा, हम लोग काफी इस पे आधारित हैं।
1: कौशल विकास और ITI से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं से साझा की, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, श्रम के महत्व को बताते हुए, श्रम कर मेहनत कर मुकाम हासिल करने वाले, जीवन में आगे बढ़ने वाले श्रमिकों से बातचीत करते हुए और श्रम के अधिकारों और कानूनों की बातें करते हुए हम इस विशेष कार्यक्रम श्रमिक जगत को लेकर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कई निवेश प्रस्तावों को आज मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में बॉयल राइस्ड उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ESE एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है। श्री चौधरी ने बताया कि एक अन्य फैसले में औरंगाबाद, अरवल और सहरसा में खेल संरचना के विकास और स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
1: अगले एजेंडा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के थे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में खेल के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।
0: कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, तैयारी करें, जल्द TRE4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें।
2: हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा फिर एक अपील है, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, आपने ये सरकार बनाई है, ये सरकार आपकी है, इसीलिए आप जाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सरकार बहुत जल्दी आपके सपने को साकार करने जा रही है, आप इसको लेकर के कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, और आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग है जो लोग अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने आज पटना के सिन्हा रोड स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य भवन और बुद्ध मार्ग स्थित अकादमिक भवन में पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन भी किया। शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है।
3: जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, और उसे मुझे जाकर देखने का भी अवसर मिला कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की।
0: इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज TRE4 परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर पटना में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप अशोक राजपथ पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के

0: निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। हड़ताल के समर्थन में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ से जुड़े दुकानदारों ने प्रदेश में अधिकांश दवा दुकानें आज बंद रखीं। यह हड़ताल ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध आयोजित की गई है। हड़ताली दवा दुकानदारों ने कहा है कि मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल किया है।
1: ऑनलाइन में आज के डेट में आप एआई के जमाने में किसी भी तरह का डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको दवाएं घर पर पहुँच जाएगी। उसका कुपरिणाम क्या हो रहा है कि बहुत तरह की नस्ली दवाएं, बहुत तरह की प्रतिबंधित दवाएं, जरूरी दवाएं इसके द्वारा आ रहा है। आज हमारा डिमांड है कि जो कायदा कानून हमारे रिटेलर हमारे होलसेलर के लिए बना हुआ है वही कायदा कानून ऑनलाइन वाले के लिए भी हो।
0: हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया है कि जिले में मेडिकल स्टोर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अन्य जिलों में भी दवा दुकानें बंद रहीं। इस दौरान सभी प्रमुख अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की व्यवस्था की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIN News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आज ब्रांड बिहार पहल की घोषणा की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्यव्यापी इस पहल के तहत प्रदेश में निवेश, नवाचार और अवसरों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व स्वयं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत करेंगे। पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित बैठक में आज ब्रांड बिहार पहल से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कराकर नियोजन संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सहकारिता मंत्री और दानापुर से स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने आज क्षेत्र में बरसात के दौरान संभावित जल जमाव की समस्या से निपटने की व्यवस्था की समीक्षा की। दानापुर अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम अनिरुद्ध पांडे समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। श्री यादव ने अधिकारियों को जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या से निपटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भाग अरिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गोपालगंज एवं रोहतास जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 22 मई को 7 समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, अगरतला और न्यू जलपाईगुड़ी समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। कटिहार रेलमंडल प्रवर वाणिज्य प्रबंधक अनुप कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई को इन ट्रेनों की वापसी होगी।
6: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल से दो जोड़ी ट्रेनें जो कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई जाएंगी। ऐसे ही 5 और जोड़ी ट्रेनें हैं जो NFR रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली या आनंद विहार के लिए चलाई जा रही हैं। और इनमें जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सारी ट्रेनें वाया कटिहार NJP होते हुए जाएंगी। NFR से जाने वाली ट्रेनें जो हैं विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी, वो 22 तारीख को यहाँ से चलेंगी और वो दिल्ली या आनंद विहार टर्मिनल को पहुंचेंगी। जो वहां से वापस आने वाली ट्रेनें हैं वो 26 तारीख को वहां से चलेंगी।
0: विशेष निगरानी इकाई की टीम ने सहरसा जिले के महेशी अंचल कार्यालय के अंतर्गत बेलाही और सिरवार हलका के राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह को 16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इस मामले में दलाल की भूमिका निभा रहे फूलचंद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर जमीन की रसीद काटने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। ADG निगरानी पंकज कुमार दराद ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनी गांव से पुलिस ने बैंक ऋण लौटाने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिले में पुलिस लाइन के समीप सड़क पर आज एक पेड़ गिर गया। इस घटना में एक महिला घायल हो गई। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल भेजा और सड़क से पेड़ की टहनियों के हटाने के निर्देश दिए। सुपौल जिले के बीरपुर में नगर पट्टी सीमा चौकी के समीप SSB और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर और एक देशी पिस्तौल बरामद किया गया है। सीमा सड़क संगठन के अपर महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने आज भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में बेली ब्रिज पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू कर दिए जाने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा TRE4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
1: सारण जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की प्रगति की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जाएगी। इधर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गंगा नदी के किनारे कटाव और संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संभावित कटाव स्थलों को चिन्हित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने और राहत की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा चिन्हित कटाव स्थलों पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। सारण जिला के मस्तीचक में संचालित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार और आधुनिकीकरण लाने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी ने 150 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 3,30,000 सर्जरी की जाएंगी और करीब 1,000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण सेवा के लिए 10 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। जिले में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यव्यापी फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत किसानों को डिजिटल पहचान दी जा रही है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते दिनों सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की और सड़क, स्वास्थ्य और रेलवे परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके।
0: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इन शिविरों का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। शिविर में जिलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में आम लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। बीते दिनों जिले में हुए ज्वेलरी कांड, लूट कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि लूट कांड के मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित कुमार सिंह घायल हो गया। इसके बाद अपराधी को इलाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना भेजा गया है। हाल ही में गृह विभाग ने जिले में 2 पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। स्वीकृति मिलने के बाद जिले में 2 पुलिस अधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जिले के लोगों ने कहा कि बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक मामलों पर नियंत्रण के लिए सरकार का यह कदम काफी अहम है। कई सामाजिक और राजनीतिक दलों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जिले में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों और लैब

0: के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष टीम गठित की गई है जो जिले भर में निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अब तक कई निजी अस्पतालों और लैबों के अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें करीब 50 अस्पताल और लैब संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइसिकल पर छूट देने के फैसले के बाद सिवान में महिलाओं के बीच उत्साह बढ़ गया है। शोरूम पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस पर महिलाओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कम खर्च में सुरक्षित सफर संभव होगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से फार्मर आईडी बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब 1,16,711 किसानों को पंजीकरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी बनवा लें ताकि बिना किसी रुकावट के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविरों का आयोजन,
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार हैं शंकर मिश्र नाहर। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं परमानंद की ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुरलहरी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज गायक कलाकार थे शंकर मिश्र नाहर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म दो कलियां से लिया है। मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के हैं। संगीत तैयार किया है रवि ने।

अब सुनते हैं फिल्म एक नज़र का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर की युगल आवाज़ें हैं। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है. बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी. वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.

किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर के युगल स्वर में सुनते हैं फिल्म अवतार का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। किशोर कुमार, आशा भोसले एवं साथियों का गाया फिल्म प्रेम नगर का एक गीत सुनते हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

साजन बिन सुहागन। अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं यशुदास एवं अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार हैं उषा खन्ना।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म सीमा में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आवाज लता मंगेशकर की थी। रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के

0: अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय

0: सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो

0: अटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96 रुपए और 83 पैसे पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4%

0: The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है हम मिलकर शिपिंग पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है यूक्रेन पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of

0: cricket match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वजीर आजम ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात के खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर व खोज किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मुआवनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज़्ज़ुद्दीन और बहरीन का

0: किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाड और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
2: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
3: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
1: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया, परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
3: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
0: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
1: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
3: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव, वी विल शेयर नॉलेज and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
0: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था, तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन

0: की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
3: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
3: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
3: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
4: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
4: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। विषय कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने जिस फनकार का चयन किया है उसका नाम हम आपको बताएंगे बस थोड़ी ही देर में।

जी हाँ, आज के कार्यक्रम के लिए जो हमारे फनकार हैं उनकी फ़न को जानने के बाद आपको भी उनके फ़न से दरअसल

गायक और संगीतकार अनु मलिक का जन्म भारत में हुआ था, भारत में हुआ है, और भारतीय सिनेमा में उन्होंने अपनी अच्छी गहरी पैठ बनाई है, अपनी संगीत की एक अलग क्षेत्र का चयन कर उन्होंने अपने सुनने वालों को अपने फन से रिझाया है। और यही कारण है कि आज बड़ी तादाद में उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्हें उनके फन के आधार पर उनसे प्यार करते हैं। आइए सुनते हैं पहला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से।

अनु मलिक का जन्म 2 नवंबर सन 1960 को भारत में हुआ था और एक संगीतकार के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया। संगीत निर्माण का कार्य उन्होंने सन 1977 में शुरू किया। वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता संगीत निर्देशक के रूप में हैं। संगीत निर्देशन का गुर या कहें हुनर उन्हें अपने पिता संगीतकार सरदार मलिक से प्राप्त हुआ, या यूँ कह लें कि उन्हें संगीत निर्देशन का जो हुनर था वो विरासत में उनके परिवार में पहले से ही मौजूद था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े तो संगीत के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और फिर धीरे धीरे भारतीय फिल्म उद्योग में उन्होंने फिल्म निर्देशन का काम किया और काफ़ी सफल रहे। सन 1990 के दशक में वह कई सफल फिल्मों के गाने संगीतबद्ध कर चुके थे। संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने फिल्मों में विभिन्न शैलियों के लिए संगीत बनाए। हालांकि वह 1977 से ही सक्रिय थे, लेकिन 90 के दशक में तक आते आते वे एक प्रतिष्ठित संगीतकार के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर चुके थे। इन्हीं के संगीत निर्देशन में आपको सुनवाते हैं फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम एवं अलकाया गीक ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

अनु मलिक का पूरा परिवार संगीत के ही क्षेत्र में कार्यरत थे। उनके पिता सरदार मलिक, उनके भाई डब्बू मलिक और स्वयं अनु मलिक, यहाँ तक कि उनके जो अब अगली पीढ़ी के लोग हैं अमाल मलिक, वे भी संगीत के क्षेत्र में ही काफ़ी अग्रसर हैं। इनका संबंध टीवी के इंडियन आइडल शोज के साथ भी काफ़ी जुड़ा हुआ है और इसका यही कारण है कि घर घर में उन्हें लोग काफ़ी सराहते हैं। रियलिटी हंटिंग सिंगिंग शो सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स 2022 में भी वे जज थे। 2004 में शो की शुरुआत करके 2013 के शो में प्रारूप को बदलकर इंडियन आइडल जूनियर बनने तक के टीवी शो में वे जज कर रहे थे। अनु मलिक के दूसरे भाई अबू मलिक भी संगीतकार और गायक हैं। उनके मामा उर्दू कवि और फिल्म के गीतकार हसरत जयपुरी थे। सन 2001 में आई फिल्म रिफ्यूज के लिए उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार के रूप में उनका नाम नामित किया गया। फिल्म बाजीगर के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म पुरस्कार मिला था। अब आइए आपको सुनवाते हैं शंकर महादेवन एवं साथियों का गाया फिल्म मिशन कश्मीर का एक गीत। गीतकार समीर और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

अनु मलिक ने अपने कैरियर की शुरुआत सन 1977 में फिल्म हंटर वाली से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया। साल 1993 में अनु मलिक को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली महेश भट्ट की फिल्म बाजीगर से। बाजीगर का वो गाना ये काली काली आंखें उस समय बेहद मकबूल हुई थी। उसके बाद उन्होंने आने वाले समय में कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी न केवल आवाज दी बल्कि संगीत से भी अपने सुनने वालों को थिरकने पर विवश कर दिया। जैसे जैसे अनु मलिक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए वैसे वैसे ही विवाद भी गहराने लगे। खासकर टीवी शो के कारण उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि बाद में धीरे धीरे यह उनके फन के आगे यह सब चीजें काफी पीछे छूट गई।

केके और वसुंधरा दास की युगल आवाज में यह है फिल्म मैं हूं ना का गीत। गीत के बोल जावेद अख्तर ने तैयार किए थे और संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के फनकार थे संगीतकार अन्नू मलिक। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। पिछले फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल आवाजें हैं। गीत के बोल खुर्शीद हल्लालपुरी के हैं और संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, युगल आवाजें लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है नाच उठा संसार। सुनिए ये गीत।

किशोर कुमार एवं आशा भोसले का गाया एक गीत सुनते हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है राम बलराम।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर एवं मुकेश का गाया फिल्म प्रेम कहानी का एक गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा

0: बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAOs on honor to Prime Minister